मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 6 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज का चिंतन। ईमानदारी वह विशिष्ट आभूषण है जिसे धारण करने वाला सदैव उन्नति के पथ पर बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन जीना चाहिए, जिससे हम समाज में

आप और हम सभी मानते हैं कि जीवन की परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती। सुख दुख जीवन में ऋतुओं के समान आते जाते रहते हैं। सभी सुखी जीवन चाहते हैं। यदि हमारे जीवन में विपत्तियां, बाधाएं, अवरोध न हों तो उनको विजय प्राप्त करने का सुख कैसे अनुभव होगा? उसके लिए उस परमात्मा में विश्वास, धैर्य और मानसिक शांति की आवश्यकता है।

शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और इसी दिन हनुमान जी की पूजा भी हम करते हैं। हनुमान जी की अपार शक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर शनिदेव ने वचन भी दिया था कि कभी भी हनुमान जी के भक्तों को किसी भी प्रकार की पीड़ा कष्ट नहीं देंगे।

बजरंग बलि हनुमान जी और प्रभु श्री राम का संबंध इतिहास में अद्वितीय समर्पण और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। हनुमान जी की भक्ति उनका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें उनका पूरा जीवन पूरी तरह से श्री राम को समर्पित था। हनुमान जी के लिए प्रभु श्री राम का नाम उनके प्राणों से भी प्यारा था। वे अपनी सभी कार्य जय श्री राम का नाम जाप करके ही पूर्ण करते थे।

मानव जीवन एक महान यात्रा है। तरह तरह के उतार चढ़ाव के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। यात्रा में जैसे इंसान आनंद पाना चाहता है, उसी तरह जीवन में अनंत आनंद पाने के लिए प्रभु भक्ति की आवश्यकता होती है।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत की दैनिक प्रस्तुति वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आइए अब सुने श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग।

भारद्वाज आश्रम में विश्राम करने के पश्चात श्री राम सीता तथा लक्ष्मण समेत यमुना पार करके गहन वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर वनों, सरोवर तथा पर्वतों की निराली छटा देखते हुए श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वन, पर्वत श्रृंखलाओं तथा पवित्र जलाशयों से घिरा ऋषिवर का निवास स्थान अत्यंत रमणीक है। सरोवरों में कमल तथा वन वृक्षों पर पुष्पों की भरमार है। ऋषिवर ने श्रीराम के आगमन का समाचार सुन उनकी अगवानी की। उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदित कर श्रीराम आदि ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुकों की छवि देख मुनिवर के नेत्र शीतल हुए। मधुर कंद मूल और फलों का आहार प्रस्तुत करके अतिथियों के विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। श्रीराम ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि से अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

0: सुरेश वाडेकर के स्वर में आपने सुना श्री रामचरित मानस गान का धारावाहिक प्रसारण। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से लीजिए अब सुनिए कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि

0: बातों में जिक्र करेंगे जैविक खादों का उपयोग इसके बारे में। किसान भाइयों, हमारे बड़े बडेरे पहले गोबर की खाद गिराया करते, यो जो यूरिया है, डीएपी है, फास्फोरस है, पोटासियम है, इसका तो नबेरा ही कौन था। लेकिन एक टाइम आया, उस टाइम पर थोड़ी सी जरूरत समझी गई। उस टाइम पर क्या था कि अन्न कम पैदा कर पाओ थे हम, 8-10 मन किले में हो गए तो न्यूका आकर देवा बतेरा ही हो गया। लेकिन आज 70-80 मन भी एक किले में हो जाए हैं तो फिर भी न्यू भूख से मारी रही रहा है, अगर और हो जाओ तो थोड़ा सा जब ठीक था। तो जो यह भूख है, इसके कारण हमने काम दाम में बदलाव कर दिया। उस बदलाव में बात आ गई, नई तकनीक आ गई, उन काम प्रयोग करने लगे। शुरुआती दौर में जो कर आटे में नमक डाल्या करें, न्यू हम थोड़ा सा रसायन का छिड़काव करना शुरू कर गए। देखो, इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना वो भी एक आसान काम नहीं था, अन्न इतना नहीं हो पाओ था। आज का टाइम हम देखें ना तो आज तो हम इतना अन्न ले रहे हैं कि हम औरों की भी पूर्ति कर सका हाँ। भगवान के दयाते हैं, अन्न बहुत है हमारे पास है। लेकिन उसके साथ साथ नुकसान क्या होया? नुकसान होया कि हमने जो अपनी ज़मीन है वह खराब कर ली, उसका दोहन कर लिया, एक के बाद एक फसल लेना शुरू कर दिया। कदे खाली छोड़ने का नाम नहीं लेंदे। चलो खाली छोड़ें भी क्यों करें, जोत भी कम हो रही है, जब खाली छोड़ेंगे तो बोएंगे कि, और जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके हिसाब से तो ज़मीन तो कम पड़ेगी, क्योंकि आबादी बढ़न लाग रही है, रहने खातर हमने जगह भी चाहिए, कितने फैक्ट्री भी लागन लाग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मार दूर बोन खान की ज़मीन कम होने लगी, हम उस समय एक के बाद एक गणीय फसल लेने लग गए, उसने खाली रहने का मौका नहीं छोड़ दे। थोड़ी सी जब फसल खाली रह जाए तो उसमें जान आ जा, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही। तो इब हम की कर सका हाँ कि ज़मीन भी वाह है, पैदावार भी हमने पूरी रखनी है, ज़मीन की सेहत भी ठीक रहे और हमारा काम भी ठीक चल रहा है, उसमें तो हम कुछ बदलाव करेंगे। एक तो जो रसायन का छिड़काव है यो हमने बंद करना पड़ेगा। इब एकदम तो बंद कर दिया तो फिर ज़मीन धन देना बंद कर देगी, और ज़मीन ने जो कुछ ना दिया तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, खर्चा क्यों खर्चा लगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके उल्टे उस पुराने हिसाब किताब पर दोबारा आवा, जैविक खादों का प्रयोग का नियम चलना, हम अपने खुद का भी जैविक खाद तैयार कर सका हाँ, बना बना भी मिल जाए, कैचवा खाद भी खुद बना सका हाँ, नहीं तो बिक्री भाई बतेरे कर रहे हैं उन पर भी हम ले इसका हाँ। बात रही गोबर की खाद की, गोबर की खाद देखो ये पशु कम रखन लगे, इतनी न्यू बन रही है कि ये भाई अपना चल दूध मोल ले लेंगे, चल जगह काम नौकरी नाकरी करे हैं, कोना घना सा पशुआ काम नहीं चलता, यह विचार भाइयों का हो गया तो गोबर भी कम बन पावे है। थोड़ा बहुत किते गौशाला में तो ले लिया, कुछ और किते तो ले लिया, उसकी गुणवत्ता इतनी बढ़िया नहीं होती कि जितनी हमारे खेत ने चाहिए। चलो फिर भी हमें कुछ ना कुछ इसका जब्ता तो बांध देंगे, काम तो हमने करना है, ज़मीन की सेहत भी ठीक रखनी है, उसमें तो पैदावार भी हमने पूरी लेनी है, तो कोई ना कोई तो उसकी खातर हमने काम करना पड़ेगा। तो जैविक खाद का काम सारा लिया, उसका फायदा क्या होगा? फायदा एक तो ये होगा कि जो ज़मीन खराब होने लग रही है वो ठीक होने लग जाएगी, ज़मीन पानी पीने लग जाएगी। कुछ भाइयों की ज़मीन तो ऐसी हो रही है कि पानी दे दें तो कई कई दिन तक खड़ा रहे है, वो नहीं पी पा रही उसने पानी ने। एक तो मिट्टी पानी की जांच करवाओ, सबसे पहले मिट्टी पानी की जांच करवाएं, पाछे बेरा लग जाएगा इस चीज़ की कमी है। और कोई फसल जब हम बोआ है ना, उस तो पहले गोबर की खाद एक बार गिर लिया। हर बार जो हर साल हम एक खेत में नहीं दे पाएं तो एक साल छोड़ के अगले साल हम दे दें। एक बात और ध्यान करो किसान भाइयों, जो रसायन है, रसायन तो ऐसा हो गया जैसे अंग्रेजी गोलियों है ना, बुखार हो गया ये गोली दे दी और उस तो आराम लग गया, दोबारा फिर कुछ नहीं, दोबारा बुखार फिर आ जाएगा। लेकिन जो आयुर्वेद है या जो देसी तरीका है, वो बीमारी की बजाय उसकी जड़ पर प्रहार करेगा कि यह दिक्कत आ कित रही है, और शरीर ने मजबूत करेगा। वो ये बात अपनी ज़मीन की गेल है भाई, हमें जितने कमजोरी पड़ रही है ज़मीन में, उस जगह पर हाथ लगावा जाकर, उस जगह खुराक दें, और फिर जब हमारी ज़मीन धन देने लगेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इन रसायनों का हम छुटकारा पा लिया। इमनू देखो कि कोई सब्जी फसल बोआ हाँ, कोई फल उत्पादन हम करा हाँ, उसमें कई भी देखा हाँ कि इतना जहर मार दे है का भाई, तो जब वो बाजार में बिक्री खतरा हो ना तो बड़ी उसमें समस्या है, खावा हाँ तो कड़वा मुँह हो जाए है, नुकसानदायक साबित हो जाए है। तो ये कुछ ऐसे बात हैं कि आने वाले समय के लिए एक बहुत बढ़िया समस्या बन सके हैं।
1: आपने सुनी कृषि की बातें आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारी विशेष सभा में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के 5वें एपिसोड का प्रसारण। शाम 7:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम युवा शक्ति। वार्ताकार होंगे युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया।

रात 9:30 पर सुनिएगा साहित्य भारती पत्रिका साहित्य भारती, और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित होगा। सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

सुबह सवेरे हमारी ये दैनिक प्रस्तुति लेकर आएंगे प्रातः 7:35 पर। युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे रोजगार समाचार। खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर चर्चा का विषय होगा अरहर की काश्त।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर बी के दुबे के साथ बातचीत का विषय होगा खरीद प्याज की नर्सरी तैयार करना। अलावा इसके चर्चा का विषय होगा कृषि रसायनों की खरीद में सावधानियां। और ये है संगीत के कुछ आकर्षण। प्रातः 7:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे हरिओम शरण। सुगम संगीत कार्यक्रम आप रात 8:25 पर भी सुन सकते हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर सुनिएगा राकेश किलोया और उनके साथियों को। दिन में 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी प्रसारित होगा। प्रातः 9:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सबरस। फिल्म संगीत आप दिन में 1:10 पर और शाम 7:30 पर भी सुन सकते हैं।

एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर सुनिएगा बादल फिल्म से कुछ गीत। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुने सुगम संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण की गायी कुछ भक्ति रचनाएं। बेस्ट गिफ्ट फॉर एवरीवन।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की गाई कुछ भक्ति रचनाएं। ये प्रसारण आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे।

नमस्कार हमारे सभी सुनने वालों को। कार्यक्रम में आपके साथ है आपके साथी उषा मलिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और श्रोताओ, जैसा कि मौसम के हालचाल हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। 2-3 दिन खूब तेज़ गर्मी पड़ती है, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत देखिए आंधी आ जाती है और पूरे घर में रेत ही रेत हो जाता है। इसी तरह चलता रहता है, मौसम है बदलता रहता है। कभी कभी बीच में बूंदाबांदी भी हो जाती है और मौसम कुछ थोड़ा सा तापमान कम होने की वजह से ठंडा हो जाता है, थोड़ी राहत हमें मिलती है। भाई मौसम है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, और हर मौसम के अनुसार हम अपने खान पान का, पहनावे का, किसी भी चीज़ का जो है वो तैयारी करके रखते हैं, उसी अनुरूप हम ढल भी जाते हैं। और ऐसा हमें करना भी चाहिए, क्योंकि मौसम में अगर लापरवाही बरतेंगे तो फिर मौसम की मार को भी हमें झेलना पड़ता है। और इसी तरह जब गर्मियाँ आती हैं तो देखिए बच्चों की भी छुट्टियाँ होती हैं, और ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि कहीं बाहर घूमने फिरने जाया जाए, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में जहाँ थोड़ी ठंड होती है। हालांकि पहले की बजाय जो इलाके ठंडे होते थे, पहाड़ों में ठंड होती थी, उतनी ठंड अब नहीं होती है। मौसम का इतना जो असर पड़ा है अब, और जो तापमान लगातार बढ़ रहा है उसका, लेकिन फिर भी हम यहाँ से मैदानी इलाकों से जब ऊब जाते हैं, यहाँ की गर्मी से राहत पाने के लिए हम पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना पसंद करते हैं। और घूमने जाने से होता ये है कि थोड़ा सा तो गर्मी से राहत हमें मिलती है, 10 दिन के लिए जब भी जाते हैं, या फिर थोड़ा जब रूटीन चेंज होता है तो थोड़ा सा हमें अच्छा महसूस होता है। बदलाव जब आता है हमारे रूटीन में, रोज़मर्रा के जीवन में, और जो रोज़मर्रा का जीवन है, जो हम सुबह से शाम तक अपने काम के लिए कहीं जाते हैं या घर के काम में बिज़ी होते हैं, तो उससे थोड़ी राहत मिलती है और अच्छा लगता है। तो भाई आप ही यदि घूमने फिरने जाने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो एकदम से नहीं जाना है, थोड़ा सा अपनी तैयारी के साथ जाएंगे तो जो आपकी यात्रा है वो सुखद होगी, सुरक्षित होगी। क्योंकि वैसे भी पहाड़ों पर घूमने जाना तो एक शानदार अनुभव होता ही है, लेकिन वहाँ का जो मौसम है वो बदलता है और कठिन रास्ते होते हैं, इसके लिए पूरी तैयारी करना भी बेहद ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें और हमारा जो टूर है, हमारा जो घूमने फिरने जाना है, वो सुखद याद के रूप में हमें याद रहे। सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए कि यात्रा शुरू करने से 3-4 दिन पहले अपने डेस्टिनेशन या कि जहां आपको जाना है उसके मौसम के पूर्वानुमान को ज़रूर चेक करें कि वहां किस तरह का मौसम रहने वाला है। इसके अलावा नियमित जो दवाइयां हैं, कई लोगों की तो दवाइयां जो है वो चलती रहती हैं, वो ज़रूर साथ ले जाएं। इसके अलावा सफ़र के दौरान कईयों को वोमिटिंग जैसा महसूस होता है, सिर दर्द हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है मौसम में बदलाव की वजह से, तो इस तरह की दवाइयाँ ज़रूर अपने साथ हमें ले जानी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए ताकि परेशानी कोई भी ना हो। इसके अलावा बहुत अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जब हम जाते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह में, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ जाने से पहले आपको डॉक्टरों से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और छोटा ऑक्सीजन कैन भी अपने साथ रखना चाहिए। इसके अलावा तापमान में उतार चढ़ाव होने की वजह से हमें भारी जैकेट पहनने के बजाय कई हल्की परतों वाले, लेयर्स वाले कपड़े जो है वो पहनना बेहतर होता है। तो कुछ गर्म कपड़ों का आप प्रयोग ज़रूर करें, उन्हें साथ लेकर ज़रूर जाएं। इसके अलावा मफलर है, दस्ताने हैं, या फिर हमारी टोपी है, उसका भी हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वरना फिर वहाँ जाकर आपको ठंड लगेगी और फिर मौसम में बदलाव की वजह से, ठंड लगने की वजह से आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है, तो फिर घूमने फिरने जाना वैसे ही आपका फिजूल हो जाएगा और बिल्कुल आप इस चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा जो जूते हैं वो भी अच्छी ग्रिप वाले और वाटरप्रूफ जूते जो हैं वो उनका प्रयोग हमें करना चाहिए ताकि वो कहीं स्लिप ना हो, और मजबूत जो है वो हमें अपने फुटवेयर का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा पहाड़ों में चढ़ाई के दौरान डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी पर्याप्त पानी हमें पीना चाहिए। ठंड के इलाके में आप जाएंगे, आपको प्यास लगेगी नहीं, लेकिन पानी की तो ज़रूर देखिए शरीर को होती ही है, तो पानी आप पीते रहें, अपने साथ रखें ताकि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। इसके अलावा चलते फिरते हुए एनर्जी बनाए रखने के लिए अपने बैग में हमें चॉकलेट है, बिस्किट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ग्लूकोज पाउडर, इस तरह की चीज़ें ज़रूर रख कर चलना चाहिए। इसके अलावा सफ़र के दौरान हमें हल्का और ताज़ा खाना खाना चाहिए। भाई कई लोगों को बहुत ही चुल होती है कि वो तली भुनी चीज़ें खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन यदि आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए तो तली हुई चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें।
हल्का खाना खाएं और ताज़ा खाना खाएं। बासी खाना खाने से भी हमें बचना चाहिए और बाहर का खाना खाने से बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन खाना तो देखिए, हम कई दिन के सफ़र पर जाते हैं तो खाना पड़ जाता है बाहर, लेकिन थोड़ा सा जगह देखकर खाएं, साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं और बीमार होने से आप इस तरह से बच पाएंगे और किसी तरह भी पेट की खराबी होने से आप बच पाएंगे। इसके अलावा यदि स्थानीय गाइड की मदद आप लेते हैं, किसी अनजान ट्रैक पर जा रहे हैं, तो इस दौरान हमें स्थानीय गाइड की मदद भी लेनी चाहिए, क्योंकि गाइड जो है स्थानीय, वो अनुभवी होते हैं और आपको सही जानकारी वो देते हैं, कहाँ आपको घूमने जाना चाहिए और किस तरह का सफ़र आपके लिए ये रह सकता है और किस तरह की चीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं। स्थानीय जो गाइड हैं वो अच्छी तरह से आपको बता पाएंगे। पहाड़ों पर मौसम ख़राब होने के चलते अक्सर बिजली चली जाती है, ऐसे में सुरक्षा के लिए अच्छी टॉर्च और पावर बैंक हमेशा अपने साथ रखें। पहाड़ों पर गाड़ी चलाते समय, पैदल चलते समय कभी भी हड़बड़ी ना करें और दुर्घटनाओं से बचने के लिए गति धीमी रखें और सुरक्षित रखें। तो इस तरह से आप अपने चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हर जगह का ध्यान रखेंगे तो अपने सफ़र को, अपने जो घूमने आप जा रहे हैं उस चीज़ को सुरक्षित बना पाएंगे, अपनी यात्रा को सुरक्षित सुखद बना पाएंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप घूमने जाएं और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और गर्मी से निजात पाने के लिए आप ज़रूर किसी भी पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए जाएँ और सावधानियाँ ज़रूर बरतें।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये थे कुछ संदेश और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक और विषय पर। श्रोताओं, विश्व कीट दिवस आज हम मना रहे हैं और विश्व कीट दिवस यानी कि 6 जून को हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। विश्व कीट दिवस की शुरुआत हुई 2017 में आज ही के दिन बीजिंग चीन में, और इसे चीनी कीट नियंत्रण संघ ने आरंभ किया था। यह दिन कीट प्रबंधन के महत्व और इसके द्वारा मानव जीवन, पर्यावरण और कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। कीट जैसे मच्छर, तिलचट्टे और चूहे कई गंभीर बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। विश्व कीट दिवस पर इन बीमारियों से बचाव और कीट नियंत्रण की जागरूकता बढ़ाई जाती है। कीट नियंत्रण या कीट प्रबंधन के माध्यम से मानव जीवन, कृषि उत्पादन और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि हम स्वस्थ, समृद्ध और सतत भविष्य की ओर बढ़ सकें। कीट फसलों को नुकसान पहुंचाकर किसानों की आमदनी को प्रभावित करते हैं, और इस दिन किसानों को सुरक्षित और प्रभावी कीट प्रबंधन के उपायों के बारे में बताया जाता है, ताकि फसल बचाई जा सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पारंपरिक कीटनाशकों के पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए प्राकृतिक और जैविक नियंत्रण के तरीकों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे पर्यावरण संतुलन जो है वो बना रहे। कीट नियंत्रण में लगे वैज्ञानिक और तकनीशियनों के योगदान को मान्यता दी जाती है, जो स्वास्थ्य और कृषि सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कीट प्रबंधन केवल विशेषज्ञों का काम नहीं है श्रोताओं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। यह दिन लोगों को सफाई और कीट नियंत्रण के प्रति जागरूक करता है, ताकि स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके। बहुत सारे जो कीट हैं वो इंसान और उनके खाद्य पदार्थ या फिर उनके रहन सहन को हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं। कीट कई प्रकार के होते हैं, ये फसलों और मनुष्य दोनों के लिए खतरनाक भी होते हैं, और कुछ कीट जो हैं वो फसलों के लिए मित्र भी साबित होते हैं। यहाँ तक कि कुछ कीट तो पशुओं, कपड़ों और इमारतों तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दीमक इमारती लकड़ियों को नुकसान पहुंचाती है, सिल्वर फिश कपड़ों में छेद कर देती है, रखे हुए खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, बिस्किट व अन्य खाद्य सामग्री उसे चूहे नुकसान पहुंचाते हैं, और फसलों को कैटरपिलर और टिड्डे आदि जो है वो हानि पहुंचाते हैं। तो भाई, मित्र जो कीट हैं उनको बचाने की ज़रूरत होती है, और जो शत्रु कीट हैं उनके नियंत्रण के लिए उपाय किए जाते हैं, और इन सभी बातों पर जागरूकता फैलाने के लिए या फिर चर्चा करने के लिए विश्व कीट दिवस मनाया जाता है आज के दिन, यानी कि 6 जून के दिन। और श्रोताओं, अब सुनवा देते हैं आपको एक गीत।

जो तो आज 6 जून है और आज अभिनेता सुनील दत्त का जन्मदिवस भी है। आइए उनको याद करें और उनके बारे में कुछ चर्चा करें। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और राजनेता भी थे सुनील दत्त। उनका असली नाम बलराज दत्त था। 1957 की ऐतिहासिक फिल्म मदर इंडिया से अपार लोकप्रियता उन्होंने हासिल की और अपने 6 दशक लंबे करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ 1929 में। आप जानती हैं उनकी शादी प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त से हुई और अभिनेता संजय दत्त, पूर्व सांसद प्रिया दत्त और नम्रता दत्त उनकी 3 संतानें हैं। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने रेडियो सीलोन में एक उद्घोषक यानी अनाउंसर के रूप में काम किया। सुनील दत्त ने अपने कैरियर में 50 से अधिक फिल्मों में शानदार अभिनय किया और उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम लें तो वह मदर इंडिया, वक्त, साधना, गुमराह, पड़ोसन और मुन्ना भाई MBBS, जिसमें उनके पुत्र संजय दत्त ने भी भूमिका निभाई थी अपने पिता के साथ। 1964 में उन्होंने फिल्म यादें का निर्माण भी किया और निर्देशन और अभिनय भी इसमें खुद ही किया था और इस फिल्म का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। पर्दे के अलावा वे असल जिंदगी में भी एक बड़े नायक थे। राजनीति में भी प्रमुख नेता के रूप में वो रहे। उन्होंने भारत सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में भी काम किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ और शांति के लिए पंजाब और कश्मीर तक पद यात्राएं भी निकाली। 1963 और 1964 में उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी मिला। 1995 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 1984 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 25 मई 2005 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा को अनछुए पहलुओं को हम याद करें आज के दिन और आइए अब सुने उनकी फिल्म वक्त का ये गीत।

और श्रोताओं, अब इन सब बातों, गीतों, शब्दों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को आज का ये कार्यक्रम यहीं समेटने की। थोड़ी देर बाद आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनने के लिए। तब तक सुनते रहें गीत का शेर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने

0: संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभोगियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें

0: विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
3: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
6: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजरायल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजरायल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
2: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज हमारे कलाकार थे राकेश किलोया और उनके साथी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सबरस।

आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का गीत। युगल आवाजें लता मंगेशकर संग किशोर कुमार की थी। गीत संगीत रविंद्र जैन का। और लीजिए सुनिए लोफर फिल्म का गीत आशा भोसले के स्वर में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: और लीजिए अब सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में रखवाला फिल्म का ये गीत, गायक स्वर लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी के।

0: और यह है सब्र इस कार्यक्रम का अगला गीत जीने की राह फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

और आइए अब सुने विधाता फिल्म का ये गीत। आवाजें सुरेश वाडकर और अनवर की हैं, गीत आनंद बख्शी का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।

0: आप सुन रहे थे लैला मजनू फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी।
1: सर फिर भी झुकाना ही पड़ा।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना, मगर किस लिए है।
1: आप सुन रहे थे हंसते जख्म फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें थी, शब्द रचना कैफे आज़मी की और संगीत मदन मोहन का। और लीजिए अब सुनिए हमारा संसार फिल्म का गीत, स्वर आशा भोसले का है।

और आइए अब सुने उजाला फिल्म का गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की हैं, गीत रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का।

और कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम है इज्जत।

और अब इसी गीत के साथ संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सबरस। आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से। रिले की प्रतीक्षा करें।
1: रूह की हसरत लब पर आए, जिस्म की हसरत।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा

0: के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। खेलों में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेज होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. The revised directions have come into effect immediately. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility, and encourage sustainable farming practices. Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post,

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओने आईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:22 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी।
1: पसंद अपनी अपनी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों सुरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम का जो शुरुआत करेंगे वो भजन से करेंगे और भजन रहा होगा शंख मस्ताना और उनके साथियों का गाया हुआ। पसंद भेजी हैं आप सब ने सिसाए हिसार से। आप हैं अनूप, दिनेश, बलवान, बाली, चमन, रणधीर, सुरेंद्र और दीपांशु और उनके परिवार के सदस्य। और ये चिट्ठी भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव अजायब से सूबेदार मामन सिंह, सावित्री देवी, ऋषभ देव, ऋषि देव, नरेंद्र, वीरेंद्र, कविता, अंजलि, दिया, सागर और उनके परिवार के सदस्य। और ये चिट्ठी भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव दौड़ से श्रीराम चहल, वीर सिंह चहल, मास्टर ओम, बलवान, धर्मचंद, दया किशन, काड़ाराम और मास्टर रणधीर शर्मा और उनके परिवार के सदस्य। और ये चिट्ठी भेजने वाले हमारे श्रोता हैं लोको कॉलोनी लोहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और उनके परिवार के सदस्य। और ये चिट्ठी भेजी है गांव चिड़िया दूधवा से सोनू, मंजीत, तनीश, संगेलिया, उनके परिवार के सदस्य। तो भाई सुने अपनी पसंद का ये भजन शंख मस्ताना का और उनके साथियों का गाया हुआ।

0: भैया ने ये सुनया भजन शंख मस्ताना और उनके साथियों का गाया हुआ, और अगली जो रहोगी वो रागनी रहेगी बाबू रामदैया और उनके साथियों की गाई हुई। पसंद भेजी हैं आप सबने गांव बलियाली जिला भिवानी से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण कुमार, ममता रानी, कमल कुमार, गर्वीश तमन्या बंसल और उनके परिवार के सदस्य, गांव फरासी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और उनके परिवार के सदस्य, आसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू और उनके परिवार के सदस्य, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, बेबी आरजू और उनके परिवार के सदस्य, गिडवाड़ी मुजफ्फरनगर यूपी से ये हमारे श्रोता हैं, कृष्ण पाल डबास, अनुज राजेंद्र, अजय निट्टू, विनोद डबास और उनके परिवार के सदस्य, महेंद्रगढ़ से ममता गांधी, विकास, वंश, दिया, नौनू, शगुन और उनके परिवार के सदस्य। तो भाई सुने अपनी पसंद की रागनी बाबूराम दैया और उनके साथियों की गाई हुई।
1: कमल

0: तो भैया ने ये सुनी रागनी बाबूराम दैया और उनके साथियों की गाई हुई, और अगली जो रागनी रहेगी वो रहेगी अजीत सिंह और उनके साथियों की गाई हुई। पसंद भेजी हैं आप सब ने गांव पांडू पिंडारा जिला जींद से बादल सिंह गिल, कमलेश रानी गिल, टीनू प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल और डॉक्टर वानिका गिल, और फ्रेंड्स कॉलोनी कैथल से ये हमारे श्रोता हैं रामफल मान, रामधारी मान, पालाराम मान, इंदर सिंह मान, अनिल, परवीन, दलजीत मान, पंडित ईश्वर और उनके परिवार के सदस्य। गांव बिरौली जिला जींद से सुरेंद्र सांगवान, सचिन, अंकित सांगवान और उनके परिवार के सदस्य। गांव बहाना ब्राह्मणान से मेघराज शर्मा, गौरव, सौरव, विजय, अजय, जितेंद्र और जोगेंद्र शर्मा। गांव मुड़लाना से ये हमारे श्रोता हैं रामफल लठवाल, दिनेश, नरेश, सतपाल, सुरेश, रणधीर, जसमेर, अजमेर, यश, लक्की और मैंक और उनके परिवार के सदस्य। गांव हरिगढ़ से ये हमारे श्रोता हैं धनपत लंबा, कृष्ण लंबा, रणबीर लंबा, धर्मवीर लंबा, कुलदीप, विजेंद्र, बबलू और लंबा परिवार। और ये चिट्ठी भेजने वाले हमारे श्रोता हैं महमूदपुर रोड गोहाना से पंडित प्रभुदयाल शर्मा, विजेंद्र, दिनेश, मास्टर आज़ाद, लक्ष्य, रोबिन और उनका परिवार। और ये चिट्ठी भेजी है इसराना जिला पानीपत से रमेश जागलान, चरण सिंह जागलान, लोकेश और धीरज। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये हमारे श्रोता हैं राजा राम शर्मा, मीना, योगेश, सौरव और उनके परिवार के सदस्य। तो भाई सुने अपनी पसंद की रागनी अजीत सिंह और उनके साथियों की गाई।
1: वो कहे बोल दर्द के जख्म कर दे के

तो भैया ने ये तो सुनी रागनी अजीत सिंह और उनके साथियों की गाई हुई। भाइयों कार्यक्रम की जो आखिरी रागनी रहेगी वो रहेगी पासी नैयर अपनी पार्टी के साथ। पसंद भेजनिया है आप सब गांव अड़ेवा से नरेश लोहान, राजकुमार लोहान, जोगिंदर लोहान, रणदीप कश्यप, सतबीर पंचाल गुलसी और उनके परिवार के सदस्य। और ये चिट्ठी भेजी है नंदगढ़ से मोहन दलाल, संजय दलाल, राजेश, रोहित, दीपांशु और परिवार के सदस्य। गांव गुड्डा से मैनपाल नागर, साहिल नागर, अरविंद शर्मा और उनके परिवार के सदस्य। शिवानका से ये हमारे श्रोता हैं रामवीर बैरागी, मास्टर डॉक्टर वासिंग दलाल, दिलबाग नंबरदार और उनके परिवार के सदस्य। गांव बुटाणा से माहवीर शर्मा, भरत शर्मा, सुरेश, बलवान, रामकर्ण, सत्यवान, आज़ाद, सुरेंद्र, रामस्वरूप, सुभाष, रमेश शर्मा, दलबीर सांगवान, भूपेंद्र सांगवान, अमित और उनके परिवार के सदस्य। गांव लुदेसर से ये हमारे श्रोता हैं पप्पू राम गाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका देवी, साक्षी, रुचिका और उनके परिवार के सदस्य। गांव माधवन पाना जोजू कला से विनोद कुमार प्रजापत, अंकित, पीरिया, तनीषा, दीपांशु, वंशु, अनिल, सोनू और उनके परिवार के सदस्य। ये चिट्ठी भेजी है कस्बा दुलाना से पंडित महावीर शास्त्री और उनके परिवार के सदस्य। तो भाई सुने अपनी पसंद की ये रागनी पासी नैयर अपनी पार्टी के साथ।

0: ਤੋਂ ਭਈਆ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣੀ ਰਾਗਨੀ ਪਾਸੀ ਨਈਅਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਇਸੀ ਰਾਗਨੀ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕੁਛ ਪੱਤਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਆਏ ਹੈ ਉਨਮੇ ਗਾਓ ਰੇਵਾੜਾ ਸੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੈ ਭਗਵੰਤ ਸੰਦੀਪ ਕੁਲਦੀਪ ਅਜੈ ਵਿਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਦੱਸਿਆ ਗਾਓ ਸ਼ਿਆਮੜੀ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਉਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮਟੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਸੇ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਰਾਮਦਿਆ ਟਾਂਕ ਔਰ ਉਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਦੱਸਿਆ ਤੋ ਭਾਈ ਜੋ ਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का एक बजने वाला है। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम

ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमाचल

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में 8 से 10 जून तक आयोजित होने वाले भारतीय क्षेत्र के उत्तरी जोन 2 के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कल विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन से संबंधित व्यवस्थाओं, प्रतिनिधियों के आगमन तथा विभिन्न प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद तथा

0: अधिकारी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के आगमन, आवास, यातायात, प्रोटोकॉल, सुरक्षा तथा कार्यक्रम स्थलों पर की जा रही व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रतिनिधि मंडलों की सुविधा और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण और महिला छात्रावास का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया। इसके साथ ही सभी गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों व आम नागरिकों ने भी लगभग 101 पौधे रोपित किए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र कम बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया और करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला महिला छात्रावास का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयुष यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के वजीफे में जल्द वृद्धि करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय का गीत जारी किया। विश्वविद्यालय की रिसर्च जनरल पीएचडी शोध कार्य से संबंधित शोध गंगा पोर्टल सहित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। जींद स्थित चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर रामपाल सैनी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पत्रकारों से विशेष बातचीत में प्रोफेसर रामपाल सैनी ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कहा,
1: ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी मुझे चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की दी है। उन्होंने जो विश्वास मेरे में व्यक्त किया है उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुलंदियों पर लेके जाऊंगा। रिसर्च में और शोध में और नवाचार में, स्किल डेवलपमेंट में इस विश्वविद्यालय का नाम होगा। आने वाले विद्यार्थी यहाँ से मैक्सिमम प्लेसमेंट लेके जाए, ये मेरा उद्देश्य है।
0: एम झज्जर उप नहर के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि किसानों, ग्रामीणों और नहर विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार संवाद एवं सकारात्मक पहल के परिणाम स्वरूप सभी पक्षों के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी है, जिससे अब दोनों नहरों के पुनर्निर्माण कार्य को दोबारा गति मिलेगी। श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा करते हुए सिंचाई ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास कार्य की सफलता तभी संभव है जब उसमें स्थानीय लोगों की भावनाओं, सुझावों और आवश्यकताओं का सम्मान किया जाए। इसी सोच के तहत किसानों की चिंताओं को गंभीरता से सुना गया और सभी पक्षों को साथ लेकर समाधान का रास्ता निकाला गया। गौरतलब है कि भालौट एवं झज्जर सब ब्रांच से जुड़े अनेक गांवों के किसानों और ग्रामीणों ने नहर के तल को पूरी तरह सीमेंट कंक्रीट से पक्का किए जाने पर आपत्ति जताई थी। किसानों का कहना था कि ऐसा होने से भूजल पुनर्भरण प्रभावित हो सकता है तथा क्षेत्र के जल संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

0: किसानों की इन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नहर विभाग ने विभिन्न तकनीकी विकल्पों पर विचार विमर्श किया और लगातार संवाद की प्रक्रिया जारी रखी। फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पलवल में पहली बार साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसी के साथ ही
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आइए फिल्मी गाने सुनते हैं।

साधना सरगम और अभिजीत की आवाज़ों में हनीमून फिल्म का यह गीत था। एमजी हर्षपत ने लिखा, संगीतबद्ध किया आनंद मिलिंद ने। अगला गीत अभिजीत, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में मासूम फिल्म से सुनते हैं। गीतकार संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

ये आपने मासूम फिल्म का गीत सुना। अभिजीत, साधना सरगम और साथियों की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार थे आनंद राज आनंद। अगला गीत आइए सुनते हैं, राधा का संगम। इस फिल्म से लता मंगेशकर और कीर्ति कुमार ने गाया है, लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत पद किया है अनु मलिक ने।

लता मंगेशकर, कीर्ति कुमार और साथियों की आवाज़ों में राधा का संगम फिल्म का ये गीत था। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत था अन्नू मलिक का। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं बोल राधा बोल फिल्म से। कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज़ें आप सुनेंगे। समीर के बोल हैं, संगीत है आनंद मिलिंद का।

बोल रहा था बोल फिल्म का गीत आपने सुना, कुमार सानू और पूर्णिमा ने गाया, लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलित ने। अब आइए सुनते हैं सिर्फ तुम, इस फिल्म का गीत उदित नारायण और साथियों ने गाया है, लिखा है समीर ने।

सिर्फ तुम फिल्म का ये बेमिसाल गीत उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में हमने सुना। समीर के बोल थे, संगीत था नदीम श्रवण का। पूरा ही गीत सुनने के लायक था, हमने ऐसा महसूस किया। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं ने भी महसूस किया होगा। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहब्बत फिल्म से। अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ें आप सुनेंगे। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

मोहब्बत फिल्म का गीत, अभिजीत कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना। बोल समीर के थे, संगीत था नदीम श्रवण का। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है डुप्लीकेट फिल्म से, अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की ही आवाज़ें आप सुनेंगे, संगीत अनु मलिक का है।

डुप्लीकेट फिल्म का गीत अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में बखूबी गाया हुआ आपने सुना, अन्नू मलिक का संगीत था। श्रोताओं को बता दें, एक फिल्म से कार्यक्रम में आज रात 9:15 पर आप सुनेंगे डुप्लीकेट फिल्म के कुछ गीत। जिन श्रोताओं को इस फिल्म के गीत पसंद हैं तो वो सुनना न भूलें। फिल्मी गाने आप तक पहुँच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं दिल ही दिल में, इस फिल्म से अभिजीत ने गाया है, ए आर रहमान का संगीत है।

दिल ही दिल में फिल्म से ये गीत अभिजीत का गाया हुआ था। आखिरी गाना आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आपको सुनवाते हैं शान की आवाज़ में। इसे लिखा है विशाल ददलानी और राज कौशल ने, संगीत पद किया है विशाल ददलानी, शिराज और सम्राट ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

प्यार में कभी कभी, शान की आवाज़ में आपने इस फिल्म का गीत सुना। ये था हमारे आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: the past 21 days following the latest outbreak of the Ebola virus. Mauritian citizens and foreign residents holding valid work, residence, occupation, business or student permits will still be allowed to enter the country but will be subject to a mandatory 21-day quarantine if they have visited any of the three countries within the previous 3 weeks. India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. Very heavy to heavy rainfall conditions are also expected over parts of northeast India, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. The weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East UP, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. The Met Department further said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, remaining parts of Goa, Tamil Nadu, southwest Bay of Bengal and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather has remained clear across most parts of Himachal Pradesh today, bringing relief to people. After the recent spell of hot weather, the pleasant change in weather has significantly eased daily life. A report.
1: In Himachal Pradesh, light snowfall was recorded yesterday at Rohtang and Kunjam passes in the tribal district of Lahul Spiti, while some areas also witnessed light rainfall. This change has made the weather pleasant, attracting a large number of tourists to various destinations across the state to enjoy the scenic conditions. Meanwhile, the Meteorological Department has issued a yellow alert for today for the districts of Chamba, Kangra and Kullu, warning of possible thunderstorms, hailstorms, rainfall and lightning. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: The Board of Control for Cricket in India, BCCI, today announced Team India's 16-member T20 international squad for the tours of England and Ireland. Shreyas Iyer has been appointed as India's new T20I captain, replacing Surya Kumar Yadav. Moreover, Tilak Verma has been named as vice-captain. BCCI has also included young sensation Vaibhav Suryavanshi in the squad for the first time, following his great IPL 2026 season scoring highest runs. Prince Yadav has also been added to the squad. The team was announced after a meeting of Team India's Men's Selection Committee, led by Chief Selector Ajit Agarkar and BCCI Secretary Devajit Sekhia, for deciding the squad for the tours of Ireland and England and the Asian Games in Japan, as well as India A's tour of Sri Lanka, multi-day games, at the BCCI headquarters in Mumbai today. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon, Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Takamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Surya Kumar Yadav as India's new T20I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
4: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। RBI ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
5: With Nepal, we have an expansive agenda.
6: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है. इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं. इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी. हम नेपाल के साथ अपनी

0: इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
2: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
6: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरत ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: खेत कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भैया ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों देखो, गर्मी का मौसम है और अच्छी गर्मी चल रही है, और गर्मी के मौसम में भी गर्मी का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्योंकि इस बार तो थोड़ा ये भी सुन में आया, भाई जेठ दो हैं, और जब जेठ दो हैं तो उस साल थोड़ा गर्मी हो भी ज़्यादा है, क्योंकि लंबा समय गर्मी को मिला है। और उसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं वो उस गर्मी का भी फ़ायदा उठाए हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा है भाइयों जो हम गहरी जुताई करें उसका, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा समय वो है यू जिसमें हम मान लो जिन भैया ने धान लगाने हैं तो उनके लिए गेहूं के बाद जो धान लगाने का समय है वो बीच में खाली उन्हें मिल गया है, और उस समय में वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले हैं कि भाई जो ज़मीन की तासीर है, ज़मीन का जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा बनाने के लिए उसका एकमात्र एक यही सुझाव और उपाय है कि भाई हम उसकी गहरी जुताई करें। और देखो ये भी है भाई, ज़मीन मान लो हम जैसे रोटावेटर से ज़्यादातर जुताई करें उसमें जो ज़मीन है हमारी नीचे की 3 या 4 इंच के नीचे तो वो बहुत सख्त हो जाए, और जब सख्त ज़मीन हो जाए तो फिर हमारे जो नीचे जाने वाले जो सोत जिसको हम कहें हैं ज़मीन के अंदर जो उपजाऊ जो चीज़ है और जो पानी को नीचे ले जाने वाले स्रोत हैं वो ज़्यादातर बंद हो गया है, और नीचे एक सख्त तय बन गया है, और वो जब सख्त तय हो गया है तो फिर उससे ये कहा जाहब है जो जड़ है ना वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, और कोई भी फसल है जिसकी जड़ जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी मजबूत होगी और जितना उसका फैलाव ज़्यादा होगा वो फसल हमेशा उतना ही उत्पादन हमने ज़्यादा देगी। और वो जब संभव है भाई जब हम अपनी जो ज़मीन है उसको फोली बनाओगे, यानी कि उसको अच्छी बढ़िया बनाओगे, उसको नरम बनाओगे, ऊपर ऊपर तक हम रोटावेटर का जुताई करके इस चीज़ में खुश हो लिया हाँ कि भाई बहुत अच्छा हमने जुताई कर दी और अच्छा बान हो गया, लेकिन नीचे उसके एक जो कर्ड जिसको हम कहें सख्त जो सतह कहें वो इस तरह की बनी रहे है कि भाई उसने हमारी जो ज़मीन है वो ऊपर ऊपर से तो उपजाऊ है लेकिन नीचे उसके ज़्यादा उपजाऊपन नहीं है, और जब हम उसकी गहरी जुताई कर देंगे तो वो जो नीचे वाली सतह है जो कर्ड है वो टूट कर ऊपर आ जाएगी, और जो सूर्य की किरण लगेंगी मान लो जितनी वो तपेगी वो उतनी कमज़ोर हो जाएगी वह ज़मीन, और कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं कि भाई उसके जो पोषक तत्व हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, जो नीचे से करड़ी ज़मीन आई है वो नरम बन जाएगी, और जब नरम बन जाएगी तो फिर ज़्यादा जो भाग है हमारी ज़मीन का वो उपजाऊ हो जाएगा, और उससे हमारी जो जड़ें हमारी फसलों की जो जड़ हैं वो बहुत गहराई में जाएंगी और अच्छा उससे हमें उत्पादन मिलेगा। ये बात तो थी भाई गहरी जुताई की। एक जो हमारे किसान भाई हैं एक चीज़ का विशेष तौर पर ये फ़ायदा उठाएं, क्योंकि पूरे साल में हमने ये एक ऐसा मौका मिला है इसमें हम अपनी जो ज़मीन के स्वास्थ्य के बारे में पूरी हम जानकारी ले सके हैं, क्योंकि पूरे साल तो हम उससे फसल लेते रहे हैं, अब धान ले लिया उसके तुरंत बाद हम गेहूं की जुताई बिजाई कर देंगे, या फिर गेहूं की बिजाई के बाद तुरंत कुछ और कोई चारा फसल ले लेंगे, कई जगह पर दो दो तीन तीन फसल तीन तीन फसल भी ले लें हैं, तो ज़मीन को बहुत कम समय मिला है, तो एक तो हमने गहरी जुताई ज़रूर करनी है और एक मिट्टी और पानी की जांच बहुत ज़रूरी है। मिट्टी पानी की जब जांच हो जाए तो उस तो हमारी ज़मीन के जो पोषक तत्व हैं उसकी ताकत है उसका बेड़ा लग जाए कि भाई कितनी हमारी ज़मीन की ताकत है, इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, और उसकी पूरी ताकत को बढ़ाने के लिए यदि हम जो पोषक तत्वों की कमी है यदि वो हम दे देंगे तो फिर वो पूरी हो जाएगी, और जब वो पूरी हो जाएगी तो फिर निश्चित रूप से कही जा सके भाई हमारा जितना अच्छा प्रबंधन होगा उस प्रबंधन के आधार पर हम अपने खर्चे को भी कम कर सके हैं और अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ा सकें। खर्चा कम करके और पैदावार बढ़ाने का एकमात्र सिर्फ यही तरीका है कि भाई हम अपनी मिट्टी की और पानी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच के लिए हम एक खेत में जैसे हम नमूना ले रहे हैं तो एक बार कसी मान लो हमने एक साइड में खड़े होकर मार दी, दूसरी जो कसी है वो वी आकार में हम बना कर कम से कम 5-6 इंच का जो नमूना है वो हमने लेना है, वो हमने खेत में 5 या 6 जगह से लेना है। 5-6 जगह से जब हम ले लेंगे तो उसको हम आपस में मिला लें और मिला के आधी किलो मिट्टी हम एक ऐसी थैली में भर लें जिसमें किसी प्रकार का कोई और मिलावट ना हो, कोई मसाला ना लगा हुआ हो, तो वो हम उसके अंदर डाल कर और जो जांच केंद्र है उस प्रयोगशाला है उसके अंदर हम दे के आवें। इसमें एक हम साथ के साथ एक और भी काम कर लें, वह ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास ट्यूबवेल है क्योंकि नहरी पानी में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती क्योंकि ये तो सारा औषधीय पानी हुआ है, बहुत बढ़िया पानी हुआ है, लेकिन जो हमारे पास ट्यूबवेल हैं जिनका हम ज़्यादातर प्रयोग सिंचाई के रूप में करें हैं तो उनका उसका जो पानी है उसका भी परीक्षण कराना बहुत ज़रूरी है। यदि उसका हम परीक्षण करा लें तो हमने मिट्टी के आधार पर और पानी के आधार पर बहुत सी चीज़ों का ऐसा पता लग जाएगा क्योंकि कई चीज़ ऐसी हों जिनको मिट्टी की कमी को पानी पूरा कर दे है और पानी की कमी को मिट्टी पूरा कर रही है, उनका तालमेल कैसा है। कई बार के भाई पानी पीने में भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है लेकिन वो फसल को अच्छा लग रहा है, तो उसका यही कारण है कि भाई उसमें मिट्टी और पानी का जो तालमेल है वो कितना बढ़िया है, और वो जब पता लग सके है जब हम उसका परीक्षण करा लेंगे, उसके जो नमूने हैं वो ले जाएंगे और पानी की जो बोतल ले जाएँ भर के वो उस समय पर ले जानी है हमने कम से कम 1-1.5 घंटा पहले ट्यूबवेल चला के अच्छी साफ़ सुथरी बोतल को धो के और फिर जो प्रयोगशाला है उसके अंदर दे के आना है, इसमें कोई एक पैसा भी नहीं लगता। तो जो सारे किसान भाई हैं अपनी ज़मीन का मिट्टी और पानी की जांच है वो ज़रूर कराएं। बाकी देखो इब हम तरह तरह की जो फसल हैं उनकी बिजाई करते रहे हैं और उसमें अरहर एक दलहन मुख्य फसल है और दलहन के रूप में जो हम अरहर ले हैं वो भाई देखो पहले तो भाव भी बहुत कम होया करते लेकिन अब तो भाव भी बहुत अच्छे हैं इसके, तो उसमें वो जो हमने अरहर की काश्त करनी है वो किस तरीके से करनी है, कौन सी किस्में हैं, कितना बीज लेना है, इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले रागनी सुनेंगे बलजीत सिंह पेटवाड़िया और उनके साथियों की गाई हुई।

भैया ने ये सुनी रागनी, बलजीत सिंह पेटवाड़ी और उनके साथियों की गाई हुई, भाई इनकी रागनी एक और सुनेंगे। लेकिन खेत खलियान में हम चर्चा कर रहे थे वे अरर की काश्त के बारे में, और इसकी किस्मों की बात करें तो एक मानक किस्म है, अच्छी बढ़िया किस्म है, इसको S70-2216 के नाम से जाना जा है। ये अच्छी किस्म है, ये लगभग ये कहा जा सके है अगवे ये 8 से क्विंटल के आसपास इसकी जो पैदावार है वो हमने मिल गया है। एक किस्म है उपास 120, ये किस्म दरमियानी ही लंबी बड़ा है, लगभग 130-140 दिन के आसपास पक कर तैयार हो गया है, और इसकी जो बढ़वार की हम बात करें तो लगभग ठीक सी है वो है, ज़्यादा लंबी नहीं होती, और ये बहुत अच्छी बढ़िया किस्म है, लगभग 6 क्विंटल के आसपास हमने इसकी पैदावार मिल गया है। एक किस्म है पारस, पारस भी एक बहुत अच्छी बढ़िया किस्म है, इसको H82-1 के नाम से जो किसान भाई हैं वो जाने हैं, और इसी के नाम से जो दुकानदार भाई हमने देंगे तो इसकी ये कही जा सके भैया थोड़ी ही जो इसकी लंबाई है वो दरमियानी ही थोड़ी ही कहा जा सके है, अच्छी फैलावदार है, और इसकी फलियों की और इसकी फलत की हम बात करें तो वो जो दूसरी हैं उनसे कुछ हमने बढ़िया मिल गया है। इसके दाने थोड़े छोटे हुए हैं लेकिन चिकने अच्छे भूरे रंग के हुए हैं, और इसकी शुरुआती जो बढ़वार की हम बात करें तो वो बहुत बढ़िया बना है, और पछेत में भी यदि हम इसकी बिजाई करते हैं यानी कि जुलाई का जो पहला सप्ताह है वहाँ तक भी करते हैं, यानी कि मानसून की जो बरसात आएगी उसमें भी यदि हम पहली बरसात में इसकी बिजाई करते हैं उस समय पर तो भी हमने अच्छी बढ़िया पैदावार दे दे है, लगभग 135-140 दिन के आसपास पकड़े में ले ले है। इसकी पैदावार की जहाँ तक हम बात करें 7 से 8 क्विंटल एक किला में हमने बढ़िया पैदावार दे दे है। भाई जहाँ तक बात करें हम खेत की तैयारी की, जो अरहर की हम खेती कर रहे हैं तो उसमें जो जल निकास है उसका होना बहुत ज़रूरी है, दोमट मिट्टी हो उस जगह पे जो ये हमारी अरहर की फसल है वो अच्छी हमने बढ़िया पैदावार दे है। इसमें हम 2 जुताई कर दें और फिर बाद में अच्छा सुहागा जरूर लगा दें, क्योंकि उससे जो ज़मीन के अंदर जो नमी है वो दबी रहेगी और हमारा बीज का जो अंकुरण है वो बहुत बढ़िया बन जाएगा। जहाँ तक हम बिजाई के समय की बात करें तो ये एक इस तरह की फसल है भाई जिसको हम ले लें, और जो 2 फसली वाला खेत है जिसमें बाद में हमने गेहूं लगाना है और पहले उसमें अरहर हम लेना चाहते हैं तो उसमें उपास जो किस्म है 120 उसको हम मार्च से लेकर जुलाई तक का जो महीना है उसमें हम बिजाई कर सकते हैं, ये हम सिर्फ पहले सप्ताह तक करें। मानक और जो पारस किस्म है उसका यदि हम मध्य जून में यानी कि अब जो समय चल रहा है उस समय पर यदि हम कर देंगे तो वो हमने अच्छी बढ़िया पैदावार दिया होगा। और कई बार के है भाई जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास पानी के साधन कम हो हैं तो वो जिस समय मानसून शुरुआती मानसून आवे उस समय पर यदि हम बिजाई करते हैं तो भी हमने इनकी पैदावार अच्छी बढ़िया मिल गया है। एक सबसे जो ध्यान देने वाली बात है भाई वो ये है कि भाई हमने जो राइजोबियम कल्चर वाला जो टीका है उससे जो बीज का उपचार है वो ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें हम वो टीका ले सके हैं जैसे जो भाई मूंग में हमने लिया था वही टीका दलहन फसलों में होगा, तो राइजोबियम कल्चर वाला हम टीका ले लें और उस बीज का उपचार कर देंगे तो फिर हमारा जो बीज है वो स्वस्थ हो जाएगा और अच्छा उसका जो ये कहा जा सके जमाव भी अच्छा होगा और जो नाइट्रोजन है वो अपने तक अपनी जड़ों तक पौधे तक पहुँचाता रहेगा। जहाँ तक बात करें इसमें 5 से 6 किलो बीज एक किला के हिसाब से काफ़ी रहे है, और इसमें कतार से कतार का फासला हमने 40 सेंटीमीटर रखना है। और एक बात का ध्यान और भी कर दें कि भाई जो हमारे किसान भाई हैं थोड़ा बहुत ये सोचें कि भाई हम मूंग मांग भी बीज के ले लें हैं तो उसमें भी हम थोड़ा इसका फासला 50 सेंटीमीटर कर सकें हैं, और क्योंकि ये छोटे समय की फसल हो है और जल्दी पक्के ने हमने कुछ न कुछ फ़ायदा ये भी दे सके है, और फिर बाद में जो हमने अरहर की फसल ली है वो फुलाव करके अपने आप जो खेत है वो हमने भरा हुआ दिखाई देगा। और जहाँ तक बात करें हम इसमें 18 किलो यूरिया और 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट ये हमने देना है, और कई बार क्या है कि भाई हमारे पास मान लो ये भाई नहीं हमने SSP मिलता तो उसमें हम 35 किलो DAP हम डाल सके हैं, और राइजो जो कल्चर वाला टीका भाइयाती बताया है उसका विशेष ध्यान ये रखना भाई वो ज़रूर हमने देना है, क्योंकि इसका बिजाई के ऊपर यदि हम दे दें हैं तो आगे पैदावार है उसके ऊपर बड़ा असर आवे है, और इसकी पैदावार हमने ये दिखेगी भाई जो हमने टीका लगाया था वो थोड़ा हमने ज़्यादा मिलेगी,
इस बात का ध्यान रखना। बाकी आगे आने वाले समय में जो कुछ कीड़े हैं, कुछ बीमारी हैं, उसकी जो खरपतवार निकालने की हमारी व्यवस्था है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात है भाइयों कि हमारा खेत में जो पानी निकासी का है उसका प्रबंध होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बरसात ज़्यादा हो गया और उस समय पर यदि हमारे खेत के अंदर मान लो पानी खड़ा रह गया तो ये जो अरहर वाली फसल है इसकी ये तासीर हो भाई, ये ज़्यादा पानी नहीं उठ पाएगी और वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो जल निकासी है उसका होना बहुत ज़रूरी है, और जो दलहन फसल ज़्यादातर इस तरह की हो भाई वो ज़्यादा पानी को नहीं ले सकती, इसलिए जो उसके अंदर पानी निकासी का प्रबंध है वो होना बहुत ज़रूरी है। बाकी समय रहा तो कुछ और बात करेंगे, उससे पहले सुनेंगे रागनी बलजीत सिंह पेटवाड़ी और उनके साथियों की गाई हुई।

0: भैया ने ये सुनी रागनी बलजीत सिंह पेटवाड़ी और उनके साथियों की गाई हुई, भैया जितना हमारा प्रबंधन अच्छा होगा अरहर की हम उतनी फसल बढ़िया ले सके हैं, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण और ये सारे हमने काम करने पड़ेंगे। और भैया ये जो कार्यक्रम है खेत खलियान का वो या समाप्त, शाम ने 6:20 पर भैया ने फिर मिलेंगे सारे बण भैया ने। राम राम।
1: आपने सुना खेत खलिहान कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। FM बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में आज शाम 5:10 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर DTH और न्यूज़ ऑन AIR पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

0: मीडियम वेव 262.77 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 5:10 होने वाले हैं। हमारी तीसरी प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप हमारा सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी के साथ ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरडीह ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री राम जी भगत, जो कि सरपंच हैं सरडीह ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
2: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
3: मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरे ग्रामवासी और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे। और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकास खंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए, उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
2: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया, तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया, और

0: जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीक के स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
1: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिल के मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
0: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
1: मेरा सहयोग दिए।
0: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है, तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
1: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग लोककर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे।
0: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
1: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केरड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
0: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
1: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है, इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है, और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
0: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
1: सर, मैं पहले माइक्रोवाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रोवाटर शेड में काम किया, माइक्रोवाटर शेड कर ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
0: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
1: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
0: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
1: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रोवाटर शेड में काम किया था उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग को वृक्षारोपण लगाए।
0: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
1: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
0: मतलब उसके लिए भी अपने कार्य योजना
1: तैयार कर रहे हैं।
0: और सरपंच, जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
1: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कि उसको हम लोग बनाते नहीं है
0: जी,
1: उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं। वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
0: इस तरह की जो गतिविधियां खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
1: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
0: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
1: और सप्ताह में हम जैसे हम लोग पूरे गांव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
0: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
1: सर, केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
0: जी,
1: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
0: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
1: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता,
0: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ, इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
1: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को, और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
1: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं
0: जी,
1: और सारा समस्या का हल मैं इसमें उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इस मिनट उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर पे उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
0: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए, या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
1: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है, जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन
0: अच्छा।
1: है मेरा सोमवार मंगल बुध भी फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक हूँ, अपने घरे में बैठता हूँ और 3 दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब 3 दिन मेरा काम हो जाता है, मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है,
0: यही कारण है कि आपकी पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है
1: जी सर।
0: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने मिल रहा है, खासतौर पर जब गांव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
1: सर, उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को वहाँ आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहाँ हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
0: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
1: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, ना आदिवासी लोग रहते हैं, ना उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना। जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
0: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए। आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
1: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है। हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं।
0: जी,
1: चाहे जिसे कहा महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
0: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
1: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को, आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
0: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
1: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, प्रशासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
0: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
1: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा, उनको और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
0: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है देशगान।

0: दैनिक कार्यक्रम युवा संसार में आप सभी श्रोताओं को महिमा का नमस्कार,
1: साथ ही रिशिता का भी नमस्कार।
0: दोस्तों, जब इतिहास राष्ट्रभक्ति, त्याग और जनसेवा की बात करता है, तब गोपीनाथ बोरदोलोई का नाम स्वर्ण अक्षरों में हमारे सामने आता है। आज उनकी जयंती है और ये हमें दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सत्ता में नहीं बल्कि सेवा, संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति समर्पण में ही होता है। गोपीनाथ बोरदोलोई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, कुशल प्रशासक और असम राज्य की पहचान को सुरक्षित रखने वाले एक दूरदर्शी नेता थे। उनके प्रेम और सम्मान से लोकप्रिय की उपाधि उन्हें दी गई। उनका जन्म 6 जून 1890 में असम के नंगांव जिले में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वकालत प्रारंभ की और स्वतंत्रता और समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज़ादी प्राप्ति के बाद वो असम राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने असम की संस्कृति, भाषा और भूमि की रक्षा के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण काम भी किए। शिक्षा, कृषि और जन कल्याण की बात आती है तो ऐसे क्षेत्रों में भी उनका योगदान अमूल्य रहा। गोपीनाथ बोरदोलोई सादगी, सत्यनिष्ठा के प्रतीक थे और आज उनकी जयंती है, जो हमें ये सिखाती है कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए हमें देश की उन्नति, देश के बारे में सोचना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा महिमा। साथियों, जैसा महिमा ने बताया कि

0: गोपीनाथ बरदलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत रत्न गोपीनाथ बरदलोई थे। उनके जन्मदिन पर आज ये दिन समर्पित है। गोपीनाथ बरदलोई का जन्म 6 जून 1890 को असम के नगांव जिले के राहा गांव में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के सदस्य और साथ ही गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित राजनेता थे। बरदलोई 19 सितंबर 1948 से 17 नवंबर 1929 तक असम के मुख्यमंत्री रहे और असम के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने असम को चीन और पूर्वी पाकिस्तान से बचाकर भारत का हिस्सा बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: बिल्कुल, और दोस्तों हमारा देश तभी सही मायनों में आगे बढ़ पाता है जब हमारे अंदर देश के प्रति एक ऐसी भावना हो, और ऐसी ही भावना देश को आगे बढ़ाने की थी बरदलोई गोपीनाथ की भी, और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है वो बताती है कि विविधता में एकता की जो भावना है उसे वही हमारे देश की संस्कृति का आधार है। हमारे यहाँ अनेक धर्म हैं, भाषाएं हैं और परंपराएं हैं, और सभी धर्म हमें सिखाते हैं प्रेम, दया, सत्य, अहिंसा और सेवा की भावना को। अगर हम इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो समाज में आपसी मतभेद कम हो सकते हैं। धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का ये विकास परिवार से, विद्यालयों से और समाज से शुरू होता है। आज के समय में जब बढ़ती हुई स्वार्थ की भावना, असहिष्णुता और सामाजिक विभाजन समाज के लिए एक चुनौती है। आपसी भाईचारे और धार्मिक सामाजिक मूल्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं और ये समाज में प्रेम, शांति और एकता को स्थापित करते हैं और देश को विकास की ओर अग्रसर भी करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और भाईचारा लोगों के बीच प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और एकता की भावना को बढ़ाता है, जिससे समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। धार्मिक मूल्य हमें सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा, त्याग और दूसरों की भलाई करने का मार्ग दिखाते हैं, जबकि सामाजिक मूल्य अनुशासन, सम्मान, समानता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। जब व्यक्ति इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाता है दोस्तों, तब वह न केवल एक अच्छा इंसान बनता है बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आपसी भाईचारा और धार्मिक मूल्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। हर धर्म की मूल भावना समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखना है। किसी भी धर्म का उद्देश्य है कि उसके भक्त एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहनशीलता और सम्मान का व्यवहार करें।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन का विशेष कार्यक्रम रहता है रोजगार समाचार का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं और पहला रोजगार से जुड़ा हुआ समाचार हम आपके लिए लेकर आए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कुल 83 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सीनियर रेजिडेंट के पद हैं ये, जिनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जून रखी गई है। वही बात करते हैं आयु सीमा की, तो अधिकतम आयु सीमा अभ्यर्थी की होनी चाहिए 45 वर्ष। और आप अधिक जानकारी के लिए, आवेदन के लिए विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट आपको बताते हैं दोस्तों, esic.gov.in।
0: अगला रोजगार समाचार है, आप इस रोजगार के लिए 11 जून से पहले इस सरकारी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड ने 660 मैनेजमेंट ट्रेनी वैकेंसी निकाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ CBT होगी। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कई अन्य ब्रांच के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं, और सैलरी की बात करें तो 18 लाख पर एनम तक जा सकती है, और आयु सीमा रहेगी अधिकतम 30 वर्ष। वेबसाइट है coalindia.in।
1: बिहार पुलिस ओवर सेवा आयोग में 22 पदों के लिए सहायक ओवर निरीक्षक के पद आमंत्रित किए गए हैं, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 21 जून, यानी कि इच्छुक अभ्यर्थी जो है वो 21 जून से पहले ही आवेदन कर दें। आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 से 37 वर्ष तक के अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

0: विभाग की वेबसाइट है bpssc.bihar.gov.in, bpssc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अंतिम जो सीमा है, अंतिम तिथि है, उससे पहले आवेदन कर दें।
1: अगले रोजगार समाचार में 9 जून से पहले आप NHRC की वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती यंग प्रोफेशनल्स और जूनियर रिसर्च कंसल्टेंट्स के लिए है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई परीक्षा नहीं होगी और कोई वर्क अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। सैलरी मिलेगी 70,000 प्रति माह और यह नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। पात्रता की बात करें तो LLB डिग्री होनी चाहिए और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। वेबसाइट है nhrc.nic.in। वेबसाइट आपको दोबारा बता देते हैं, nhrc.nic.in। और इसी के साथ साथियों आपको सुनवा देते हैं गीत फिल्म आज का अर्जुन से। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की, संगीत दिया है बप्पे लहरी ने और बोल लिखे हैं अनजान ने।

0: साथियों, अभी हमने सुना ये गीत फिल्म आज का अर्जुन से। आवाज़ें थी मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की, संगीत था बप्पी लहरी का और बोल लिखे थे अनजान ने।
1: और अब बढ़ते हैं आगे अगले रोजगार समाचारों पर। और इसी कड़ी में ये समाचार है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से। कुल 611 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, प्रयोगशाला सहायक के पदों पर। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। और वहीं आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 से 30 वर्ष तक की उम्र के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। jssc.jharkhand.gov.in विभाग की वेबसाइट है, इस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। jssc.jharkhand.gov.in। अगला समाचार है बैंक ऑफ बड़ौदा से, जहां पर 5000 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून है और आयु सीमा है 20 से 28 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वही आवेदन करें। bankofbaroda.bank.in विभाग की वेबसाइट है, bankofbaroda.bank.in।
0: अगला रोजगार समाचार है DRDO NMRL 2026 पेड इंटर्नशिप योजना DRDO NMRL द्वारा शुरू की गई है। चुने गए छात्रों को 6 महीने के लिए प्रतिमाह 5000 का वजीफा मिलेगा। छात्रों को ईमेल के माध्यम से अपने आवेदन भेजकर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून 2026 है। भुगतान किए गए इंटर्नशिप कार्यक्रम को अंतिम वर्ष BE विभिन्न क्षेत्रों में BTEC छात्र और द्वितीय वर्ष के MSc छात्र के लिए पेश किया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में स्थित NMRL में 20 सीटें उपलब्ध हैं। आयु सीमा रहेगी अधिकतम 28 वर्ष। ईमेल है mmg.nmrl@gov.in। इंटर्नशिप शुरू होगी 1 जुलाई 2026 से। चयन प्रक्रिया रहेगा एकेडमिक मेरिट प्लस ऑनलाइन इंटरैक्शन।
1: नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में कुल 40 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। क्षेत्र प्रतिनिधि के पदों पर ये मौका है अभ्यर्थियों के पास और अंतिम तिथि 12 जून है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 से 30 वर्ष तक की उम्र के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, nationalfertilizers.com। विभाग की वेबसाइट है nationalfertilizers.com। बढ़ते हैं अब आगे और NHAI में भी 60 पदों पर मौका है अभ्यर्थियों के पास। कुल 34 प्रबंधक के पद वहां पर रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून है और nhai.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
0: अगला रोजगार समाचार है पंजाब एंड सिंध बैंक ने 635 अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई है। आवेदन प्रक्रिया 6 जून 2026 को समाप्त होगी, यानी कि आज। योग्य उम्मीदवार punjabandsindh.bank.in पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट आपको दोबारा बता रहे हैं, punjabandsindh.bank.in। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी और वे प्रतिमाह 12,300 रुपये का वजीफा कमाएंगे। चयन प्रक्रिया योग्यता आधारित है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
1: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल 543 पदों पर मौका है। यहाँ पर RO, ARO और अन्य कुछ पद रिक्त हैं जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 21 जून अंतिम तिथि है और शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों की यहाँ पर BE और BTEC और कुछ अन्य निर्धारित योग्यताएँ हैं जिनका होना अनिवार्य है। वेबसाइट है allahabad.highcourt.in, इस पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को आप 21 जून से पहले कर दीजिए, allahabad.highcourt.in। और अगला समाचार UPSSC से है, क्योंकि UPSSC ने अधिसूचना जारी कर दी है कुल 722 पदों पर। आबकारी सिपाही के पद यहां पर रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून है। upssc.gov.in विभाग की वेबसाइट है, जहां पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को आप पूरा करें और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं upssc.gov.in। और आगे बढ़ने से पहले कार्यक्रम का अगला गीत है क्वीन फिल्म से लव जानजुआ, और सोनू कक्कड़ और नेहा कक्कड़ की आवाज़ है, गीतकार है अन्युता दत्त और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

0: अभी आपने सुना ये गीत फिल्म क्वीन से, लव जांजुआ सोनू कक्कड़ और नेहा कक्कड़ की आवाज़ थी, गीतकार थे अन्विता दत्त और संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने।
1: अगला रोजगार समाचार है, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की पोस्ट निकाली है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य JTO के कुल 100 पदों को भरना है। टेलीकॉम सेक्टर में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 3 जुलाई 2026 है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 वर्ष होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में CBT होगा। वेबसाइट है externalexam.bsnl.co.in या फिर bsnl.co.in। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास BE या BTech या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। जिन शाखाओं की अनुमति है उनमें टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, IT और इंस्ट्रूमेंटेशन शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान में MSc भी स्वीकार्य है। संबंधित विषयों में MTech के उम्मीदवार पात्र हैं। डिग्री केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या UGC द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
0: CDEC में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट और टेक्नीशियंस के पदों पर कुल 951 पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून है और अभ्यर्थियों की आयु सीमा की बात करें तो 30 से 56 वर्ष तक के अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट और टेक्नीशियंस के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। CDEC.in विभाग की वेबसाइट है CDAC.in।
1: अगला रोजगार समाचार है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS भर्ती 2026 जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 607 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 192 राज्य सेवा और 415 जूनियर सेवा के पद शामिल हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर 3 जुलाई 2026 तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी गई है। वहीं जूनियर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। UR और राजस्थान के क्रीमी लेयर OBC या MBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है। वहीं राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर OBC या MBC, AWS और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 400 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
0: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में 82 पदों पर यहाँ मौका है। 20 जून आवेदन की अंतिम तिथि है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कुछ अन्य निर्धारित योग्यताएं हैं। cat.nic.in वेबसाइट है जहां पर इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून से पहले आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में 34 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर के पद यहाँ पर रिक्त हैं, लेकिन जो अंतिम तिथि है यहाँ पर वो 24 जून है। hslwizard.in विभाग की वेबसाइट है hsl.vizag.in।
1: अगला रोजगार समाचार है, SSSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में क्लर्क के 1265 रिक्त पदों पर भर्ती जारी कर दी है। इसकी अंतिम तिथि 23 जून 2026 है। चयन के चरण में CBT, क्वालिफाइंग CPT और मेरिट लिस्ट होगा। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA, BSc या इस पास समकक्ष डिग्री के साथ वर्ड प्रोसेसिंग जैसे MS वर्ड और स्प्रेडशीट जैसे MS एक्सेल आदि की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी या संस्कृत में मैट्रिक पास होनी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन फीस की बात करें तो 710 से 1200 रुपए के बीच रखी गई है। इसी के साथ साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही किसी दिन, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने हुए हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.
3: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

पहले हमारे आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर होगा साहित्य भारती पत्रिका साहित्य भारती। शाम 7:10 पर सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे युवा शक्ति। इस कार्यक्रम में वार्ताकार होंगे युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया। ये सभी कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत में, मौसम की पूर्व जानकारी किसानों तक विषय पर बातचीत। वार्ताकार होंगे डॉक्टर मदन खीचड़। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:45। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:25 पर। एक फिल्म से कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर आज आप सुनेंगे डुप्लीकेट फिल्म के गीत। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम।

प्रातः 8:30 पर बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बालकुंज। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम घर आंगन में, शरीर की जांचों का महत्व और आवश्यकताएं विषय पर बातचीत। वार्ताकार होंगे विजय सिंह।

0: प्रातः 8:30-7:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। युवा संसार कार्यक्रम होगा 5:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम सुनिएगा 6:20 पर। 7:00 होगा कार्यक्रम ग्रामीण संसार। खेत खलिहान कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30। सुगम संगीत सुनिएगा 7:15 पर और 8:25 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 9:00। 1:10 पर होगा फोन इन कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। लोक संगीत सुनिएगा 9:30 पर। एक फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:15 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सूचना सुनिए। थाना पुरानी सब्जी मंडी जिला रोहतक से प्राप्त सूचना अनुसार रोहित अपने घर से दिनांक 6 अप्रैल से लापता है। रंग गोला, गोल चेहरा, कद 5'9", 6 फुट शरीर। इसके बारे में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक से संपर्क करें। अगली सूचना में प्राप्त हुई थाना असौदा जिला झज्जर से। मुस्कान बानो पुत्री मोहम्मद मोबीन गांव जसौदा के निवासी है। 29 मई से अपने घर से लापता है। इसके बारे में सूचना का लेन देन करने के लिए थाना असौदा से संपर्क करें। सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। रात शाम के 6:10 होने को है। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, तकनीक, नवाचार व आधुनिकता के इस दौर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण समय की मांग है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिठा ने विपक्ष द्वारा प्रदेश के कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन हेतु अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। सिरसा में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने योग प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। और फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान के तहत कल सुबह पलवल में साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि तकनीक, नवाचार व आधुनिकता के इस दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि युवाओं को समय की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण मिले। वे आज पानीपत जिले के समालखा कस्बे में सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र के वार्षिक स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व तेजी से बदल रहा है, ऐसे में यहां कौशल विकास केंद्र की स्थापना युवाओं को बदलते युग में खुद को स्थापित करने में मददगार होगी। केंद्र द्वारा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ कौशल प्रशिक्षण के लिए समझौता किए जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह केंद्र हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि 21वीं सदी भारत के युवाओं की सदी है। यदि युवाओं को सही कौशल, सही अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो वे न केवल अपने परिवार की तकदीर बदल सकते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है उसकी मजबूत नींव हमारे गांव ही है। उन्होंने कहा, यह सबके लिए गर्व का विषय है कि यह केंद्र आसपास के 100 गांव के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह प्रयास गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र में किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने दोहराया कि प्राकृतिक खेती करने वाले पात्र किसानों के लिए देसी गाय पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है, क्योंकि जीवामृत, घन जीवामृत और प्राकृतिक खाद तैयार करने में देसी गाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम खरीदने हेतु प्रत्येक किसान को 3,000 रुपए की सहायता

0: प्रदान की जाएगी। यह सहायता किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ साथ खेती को अधिक व्यवस्थित बनाएगी। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिठा ने आज अपने जींद आवास पर जन दरबार लगाकर आम जन की समस्याएं सुनी। इस दौरान पहुंचे लोगों की शिकायतों का अधिकांश मौके पर ही निपटान किया गया। जन दरबार में पुलिस सहित तमाम विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। जन दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर कृष्ण मिठा ने विपक्ष द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है।
1: मेरे ख्याल से कांग्रेस को स्वयं देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या रहा। मैं बाकी हरियाणा की तो क्या बात करूंगा, जींद में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसपी साहब और उनकी पूरी टीम कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है। चाहे कोई भी मामला आया, सभी मामलों को सोल्व करने का काम किया, चाहे वो गोल्ड का मामला था या कोई मर्डर केस सोल्व करने का काम किया।
0: देश के विभाजन और रिफ्यूजी शब्द के इस्तेमाल पर बोलते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारे पूर्वजों के लिए रिफ्यूजी शब्द का इस्तेमाल पूरी तरह गलत और ठेस पहुंचाने वाला है। लोग किसी दूसरे देश नहीं बल्कि अपने ही देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आए थे। हमारे बुजुर्गों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कॉकरोच पार्टी पर तंज कसते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि यह पूरा ढांचा सिर्फ सोशल मीडिया प्रबंधन पर टिका हुआ है, यह बहुत जल्द जनता के सामने ढेर हो जाएगा। शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों पर और विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों की वजह से व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सरकार पूरी तरह सतर्क है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। सिरसा में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शहीद भगत सिंह स्टेडियम में मनाया जाएगा। इसको लेकर आज एक दिवसीय योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और योग क्रिया में भाग लिया। उन्होंने योग प्रशिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से भी रूबरू होते हुए कहा, युवा ही नहीं सभी लोगों को योग को अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि योग दिवस से पहले प्रदेश भर में प्रोटोकॉल योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
2: योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के दिशा निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश के अंदर हर रोज योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 2014 से प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पूरे विश्व के अंदर देश के अंदर युवाओं ने इसको अपनाने का काम किया। आज पूरा विश्व जो है 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का काम करता है और योग से सारे जुड़ रहे हैं। नियमित योग करने से बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती है और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है इसके अंदर योग बहुत ही जरूरी है, जो टेंशन से मुक्त करता है, रोगों से मुक्त करता है।
0: रिफ्यूजी शब्द को लेकर लोगों में फैले रोष बारे पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऐसी बातों की वह निंदा करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह केवल सोशल मीडिया में है, उनका कोई वजूद नहीं है। पंजाब में होने वाले चुनाव पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जीत मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा में अपनी आस्था दिखा रहे हैं, पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, पंजाब की जनता भी भाजपा की ओर देख रही है। फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पलवल में पहली बार साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।

0: कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं एवं आमजन को फिटनेस, स्वास्थ्य, जागरूकता तथा सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। खेल मंत्री ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आज युवाओं से साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
1: साथियों, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा फिट इंडिया और फिट हरियाणा को लेकर जो एक मूवमेंट चला हुआ है, उसको लेकर ही साइकिल ऑन संडे सुबह 6 बजे हुड्डा सेक्टर 2 के ग्राउंड से सभी युवा साथी एक फिट इंडिया का मैसेज देने के लिए, फिट रहने के लिए साइकिल चलाएंगे। आप सब आइए, संडे ऑन साइकिल में हम सब मिलकर साइकिल चलाएंगे।
0: हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल की देवा बॉक्सिंग अकादमी में तेज तूफान से हुई क्षति का निरीक्षण किया और अकादमी की संचालक एवं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर प्रियंका तेवतिया से मुलाकात कर सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया। खेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।
2: जहाँ भी आपदा होगी वहाँ पे हम जाएंगे और जो भी मदद होगी सरकार की ओर से और व्यक्तिगत रूप से हम वो मदद करेंगे। जो भी हमारे खिलाड़ियों की बात थी उनके लिए भी जहाँ भी सामाजिक रूप से हमें खड़ा होना पड़ेगा। जो चीजें बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। इस प्रकार की आपदा में हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। जहाँ पे भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, हम भी आएंगे।
0: मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, तकनीक, नवाचार व आधुनिकता के इस दौर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण समय की मांग है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिठा ने विपक्ष द्वारा प्रदेश के कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन हेतु अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
3: आकाशवाणी का इरोहता केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों देखो, जहाँ तक हम मौसम की बात करें, मौसम में तो जो बदलाव है वो चलता रहा है, क्योंकि ईब कुछ बदलवाई देखने मिली और दिन में पूरी तेज धूप थी और दो दिन पहले भी कई जगह पर कुछ हल्की बरसात हुई, किसी जगह पर कुछ ज़्यादा भी हुई। और जो इसमें हमारे किसान भाई हैं जो चारे की फसल लगाना चाहते हैं तो वो अपना समय रहते लगा दें, क्योंकि पशुधन के लिए जो चारा है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब हम पशु को पूरे के पूरे साल हरा चारा दे रहे हैं तो उसकी जो दूध देने की अक्षमता है वो भी बढ़े है, काम करना वाला जो पशु है उसकी काम करने की जो शक्ति है वो भी बढ़े है। तो इसलिए हमने पशु को पूरे साल हरा चारा जरूर देना है और उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी बात हैं उनका भी ध्यान रखना है। और उन भाई देखो, एक तो बात ये आ गया है कि भाई हम जो पशुधन अपना ले रहे हैं उसका इतना अच्छा रख रखाव करें कि भाई वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे है। पशुधन आज का दिन बहुत महंगा हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो महंगा पशु होया है उसका जो रख रखाव है वो भी ज़रूरी है, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि ज़्यादातर हमारा जो पशुधन है वो एक जगह पर बंधा रहा हुआ है। और जो चाहे तो ये है पशुधन तो कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा घूमें और उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, लेकिन समय के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि पहले चराने के लिए पाड़ी होया करते, लेकिन इस समय पर ज़्यादातर जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो उनको एक जगह पर बांध कर रखें, उनके पास चराने की कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर भी जो खाली जगह थी उन पर, या तो क्योंकि पहले जंगल पड़े रहा करते, लेकिन अब ज़्यादातर जो अपना अक्षेत्र है वो कृषि के काम में आने लग गया और चराने की जगह भी बहुत कम रहेगी। लेकिन फिर भी यदि हमने उनके स्वास्थ्य को ठीक रखना है, एक तो जो उनका रहन सहन का तरीका है जिस जगह पर हम उनको बंद हैं वो व्यवस्था सही होनी चाहिए। एक जो समय पर पानी पिलाना है, समय पर चारा डालना है, चाहे समय पर दाना डालना है, कितना डालना है, इन बातों का भी ध्यान रखना है। और देखो भैयो, जब हम पशु को बाहर नहीं ले जा रहे तो उसके लिए कुछ शरीर है उसका जो अंदरूनी ताकत है उसको बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आज की ज़रूरत हो रही हैं, और उनमें एक चीज़ है खनिज लवण मिश्रण। खनिज लवण मिश्रण की जब हम बार बार बात करें तो इसलिए करें भाई, पहले पशु बाहर घूम का अगर दे, 70 तरह की जो जड़ी बूटी है वो खाया कर दे हरे चारा के रूप में, लेकिन आज वो सारे के सारे एक जगह पर बंद करेगी, वो उनको नहीं मिल रही और वो पशु को कहीं ना कहीं उसकी जो कमी है वो बनी हुई हमने दिखाई दे है। तो इसलिए हम पशु को कम से कम 50 ग्राम जो खनिज लवण मिश्रण है वो जरूर डालें, एक मुट्ठी नमक जरूर डालें ताकि पशु ज़्यादा पानी पीवे और अच्छा जो चारा है वो खा सके। इन कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। और जैसे हमने शुरू में ही बात की भाई, जो मौसम है मौसम के हिसाब से भी हमने चलना पड़ा है, और जो हमारे किसान भाई हैं वो मौसम की कुछ ज़्यादातर जो जानकारियाँ हैं वो फ़ोन से भी ले लें हैं, क्योंकि फ़ोन के ऊपर भी जो वेदर का ऐप है वो आया हुआ है, उससे भी जो हमारे किसान भाई हैं वो ज़रूर फ़ायदा भी उठाए हैं। इसी उसमें एक आज डॉक्टर मदन खिचड़ जी जो अपने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग के जो मुख्य वैज्ञानिक हैं, आज उनसे बातचीत करी और उसमें जो वे मौसम से पहले जो जानकारी किसानों को दी जा है उसके जो लाभ हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। तो भाई सुने ये बातचीत है। भाइयों बातचीत करेंगे मौसम की पूर्व जानकारी किसानों तक इस विषय पर, और इसकी जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर मदन खिचड़ जी। आप वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद सुरेंद्र भाई।
1: तो डॉक्टर साहब देखो, एक किसान का और मौसम का ये कहा जा है कि वे बहुत कुछ जो कृषि पर आधारित चीज़ें हैं वो मौसम के ऊपर आधारित मानी जा हैं। और कई बार हमारे जो किसान भाई हैं उनको मान लो मौसम के बारे में जानकारी का नहीं पता होता तो कई बार उनको नुकसान भी हो जाता है। इसलिए एक किसान को मौसम के बारे में कितना कैसे पता हो, किस तरह के उसके सोर्स हों कि भाई वो उनसे पता लगा सके कि भाई वो मान लो कोई गाही कर रहा है, कोई कटाई कर रहा है, कोई फसल की बिजाई कर रहा है, तो ये तीनों चारों चीज़ ऐसी हैं मौसम के ऊपर एक किसान को निर्भर रहना पड़ता है। तो इसमें डॉक्टर साहब मौसम की एक जो जानकारी, अच्छी जो जानकारी है, वैसे तो समय समय पर आपका जो विभाग है आप द्वारा जो जानकारी दी जाती है बहुत अच्छी जानकारी है, तो उसके बारे में ये बताओ कि एक जो किसान है वो किस तरह मौसम की जानकारी के बारे में पता लगा सके।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र भाई, जब मौसम का प्रभाव यदि हम देखें तो फसल की बिजाई से पहले शुरू होता है और फसल की कटाई और कटाई तक
1: जी
2: और मंडी तक ले जाने के लिए
1: जी
2: इसे मौसम की जानकारी की बड़ी उपयोगिता होती है।
1: जी जी
2: जैसे आपने बताया कि बिजाई करते हैं यदि बारिश होती है तो बिजाई क्रुंड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। बीज आजकल इतना महंगा है और अच्छी क्वालिटी का बीज मिलना ही बहुत मुश्किल है। फिर आप कटाई, कढ़ाई आप स्प्रे करनी है, खाद डालनी है, सिंचाई है, आज पानी की बड़ी कमी है, इन चीजों के लिए मौसम की जानकारी की बड़ी महत्व है।
1: जी जी।
2: और आज भारत मौसम विज्ञान विभाग जो IMD है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो इस देश की नोडल एजेंसी है, और आपका मेट्रोलॉजिकल सेंटर चंडीगढ़ है, और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का कृषि मौसम विज्ञान विभाग है, ये सब मिलकर किसानों तक अपनी जानकारी पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं हम
1: जी।
2: और इस जानकारी को हम किसानों तक, आजकल क्या है कि मोबाइल आ गया है, मोबाइल हर एक किसान की जेब में है, तो उनको मैसेज करते हैं हम भाई, उसके किसान तक उसका मैसेज मिल जाए। व्हाट्सएप आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं हमने, उन किसानों तक उनके ग्रुपों में डाल देते हैं, मीडिया को ग्रुप बना रखा है, मीडिया में भेजते हैं कि वो न्यूज़पेपर के माध्यम से किसान तक आ जाए। आजकल किसान आजकल सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, फेसबुक पेज है ई मौसम HAU, और जो ग्रुप बना रखे हैं फेसबुक ग्रुप, उनके माध्यम से किसान उस जानकारी तक पहुँच जाती है घंटों में। पहले ये टाइम लगता था कि हमने पूर्वानुमान जारी किया मंगल और शुक्रवार को, वो बुध या वीर को जाके छपता था, तब तक बारिश होके भी चली जाती थी और फिर किसान कहता था कि मौसम पूर्वानुमान सही नहीं है। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है और हर किसान तक विद इन घंटों में पहुंच जाता है। कई बार मौसम की जानकारी पूर्वानुमान देते हैं वो 4 घंटों का भी देते हैं हम, 3 घंटों का, तो वो भी किसान तक पहुंच जाता है। यदि मैं हिसार से कहूँ रोहतक अगले 3 घंटे में बारिश होगी, तो घंटे में सारा मैसेज रोहतक जिले में पहुँच जाता है। लाखों लोगों तक ये जानकारी हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और विश्वविद्यालय का यही प्रयास है कि हर किसान तक यह जानकारी पहुंचे, चाहे वो अनपढ़ किसान है और चाहे पढ़ा लिखा किसान है। अभी अनपढ़ वाले तो कम रहेंगे, पढ़े लिखे किसान है उन तक यह जानकारी पहुंचे, ताकि वो जो कृषि कार्य करे वो मौसम आधारित करे, मौसम की जानकारी के साथ करे, ताकि उनके जो इनपुट है, जो लागत है, वो कम हो जाए और पैदा बढ़े, तो आमदनी तभी बढ़ेगी जब खर्चे कम हो जाएंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें एक बात, जैसे आपके जो मैसेज आते हैं या आप जो पूर्वानुमान की जो बात करते हैं मौसम की, उसमें एक जो पश्चिमी विक्षोभ शब्द लिखते हैं, तो उसका क्या महत्व है, उसको किस तरह हम जो किसान भाई हैं उसको कैसे ये पकड़ें भी जो पक्ष जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण किस तरह जो मौसम में बदलाव है उसका क्या, हमने मान लो पहले ये दिखे कि भाई जो पश्चिमी विक्षोभ आपने लिखा है या आपने बताया है उसको हम किस तरह समझें कि भाई इसका ये प्रभाव आगे आने वाले समय में पड़ना है।
2: बिल्कुल सही क्वेश्चन है सुरेंद्र भाई। इसमें पश्चिम विक्षोभ, पश्चिमी पश्चिम की तरफ से विक्षोभ होता है गड़बड़ी,
1: जी जी,
2: इसको हम इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं WD। ये पश्चिम विक्षोभ पश्चिम की तरफ से आता है।
1: ठीक।
2: पश्चिम में हमारे क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान

0: पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, उधर से आता है। एक मेडिटेरियन ओशियन है, वो मध्य सागर कहते हैं हम जिसे हिंदी में, वहाँ ये सिस्टम ओरिजिनेट होता है, वहाँ पैदा होता है, और वहाँ से चल के ये ईरान इराक होते हुए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए ये भारत में प्रवेश करता है। कई बार तो ये भारत में अपने मैदानी क्षेत्रों की तरफ आ जाता है, कई बार ये सीधा ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ जाता है, इसमें कई बार पहाड़ों से फिर बारिश आती है अपनी तरफ। तो ये कई प्रकार होते हैं और ये महीने में 4 या 5 पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। जो सर्दियों की जो बारिश है, जो अपने गेहूं और फसल होती है, उन फसलों के लिए उस बारिश का मुख्य कारण ही पश्चिमी विक्षोभ है।
1: यानी कि जो अपनी रबी वाली फसलें हैं उनमें जो पश्चिमी विक्षोभ है
0: बहुत ज्यादा,
1: यदि उसका हम देखें तो उस पर बहुत ज्यादा इसका असर
0: बहुत ज्यादा होता है। और इसकी जो हम गणना करते हैं उसकी भी ऑथेंटिसिटी हम कह सकते हैं, एक्यूरेसी कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा है
1: जी।
0: हम सत्यता के साथ कह सकते हैं कि आने वाले 10 दिन में इस प्रकार का मौसम रहेगा, इसका प्रभाव हरियाणा पर है या पहाड़ों पर रहेगा, सिर्फ हरियाणा में नहीं होगा, और यदि होगा तो हरियाणा में किन किन जिलों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और वो क्या होता है, कई बार ये राजस्थान से होके आता है, कई बार पंजाब के थ्रू आता है पहाड़ों में होके, तो ये पता लग जाता है। और उसकी एक्यूरेसी विंटर रेनफॉल की ज़्यादा होती है, क्योंकि मानसून, अभी जैसे मानसून आएगा भी, अभी केरला हिट हुआ है 4 तारीख को, और अभी जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, अब जैसे जैसे आगे वो बढ़ता जाएगा, जब अपने तक उसकी हवाएं आने लगें तो ये WD बंद हो जाएंगे आने अपनी तरफ, ये सिर्फ सीधे ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ बढ़ेंगे, अपने यहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा आगे 15-20 जून के बाद में कम दिखाई देगा, तब तक इसका प्रभाव रहता है अक्टूबर से लेके और जून तक आ जाते हैं। वैसे जनरली हम कहते हैं अक्टूबर से मार्च तक, परंतु इसके प्रभाव जब गर्म हवाएं होती है और नमी ले लेती है तो वो बादल बनाती है, इसमें एक बादल बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जिसको ये होते तो लो क्लाउड है 2 किलोमीटर तक, परंतु ये बन जाते हैं चट्टान की तरह, और ये जैसे नमी ये वाष्प जल वाष्प होते हैं ऊपर जाते हैं, तो ये क्या होता है कि ओले बनते हैं इसमें, प्याज के छिलकों की तरह ये लेयर बनती रहती है, और जब भारी हो जाता है बादल में ज़्यादा ये भार हो जाता है तो वो एक पट्टी के रूप में, पट्टी में जैसे 2 किलोमीटर की एक पट्टी है पूरी, उसमें जाके ये ओले गिरते हैं। ओले सारी जगह नहीं गिरते, गरज चमक होती है, बिजली चमकती जरूर है, परंतु ओले तब बढ़ते हैं जब वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, और WD में ज़्यादातर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से ही बारिश होती है।
1: यानी कि ओलावृष्टि जहाँ आप बताते हैं वहाँ इसका यही हुआ कि जहाँ गरज चमक बनेगी उसके कारण वो फिर वो जो छुलके हैं वो टूट जाते हैं।
0: हाँ,
1: टूटने के बाद ही फिर ये ओलावृष्टि बनता है।
0: हाँ, वो नीचे गिरते हैं
1: जी,
0: तो जिस एरिया में गिरते हैं वो सिर्फ एक पट्टी होती है।
1: अच्छा,
0: आप आस, ये नहीं होता कि पूरे जिले में गिर गए, नहीं गिरते, वो 1-2 किलोमीटर की पट्टी होती है, उनमें कौन कौन से जिले, क्योंकि हरियाणा छोटा सा प्रांत है तो उसमें कई जिलों में इफेक्ट आ जाता है। यदि ज्यादा इफेक्ट इसकी बारिश का होता है या तो उत्तरी हरियाणा में होता है, नहीं तो क्योंकि उत्तरी हरियाणा में ऊपर से पहाड़ों से बारिश आती है उत्तराखंड साइड से, तो वो बारिश हमारे आ जाती है, नहीं तो क्या होता है कि वो बारिश राजस्थान की तरफ से आया तो पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा है उस पर इफेक्ट करता है, और वहाँ कई बार फसलों को नुकसान भी काफ़ी कर देता है। अभी जैसे पीछे एक नर्मा की फसल बिजाई हुई थी और उसके ऊपर ओले गिरे तो फसलों को जो तना है
1: वो तो देखो, हमारी सब्जी फसलें हो चाहे,
0: फायदा भी होता है कई बार जिन क्षेत्रों में ये होता है तो नुकसान भी होता
1: है। जहाँ तक कहा जा ओला का तो नुकसान न बने।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: लेकिन जो हम जैसे आंधी ओला इसको ये किसान भाई का भाई न कौन बदलाव है, ये तो जबरदस्ती आवे हैं। तो रही बात डॉक्टर साहब, देखो जहाँ तक हम मानसून की बात करें, जैसे अपने प्रदेश में मानसून में जो अपना जून का महीना है या जुलाई का जो पहला सप्ताह है उसमें ज़्यादातर हमारे यहाँ मानसून पहुँचती है, उसका पूर्वानुमान कैसे आप लगाते हैं और किसान भाई उसको किस तरीके से ये समझें कि भाई डॉक्टर साहब ने ये बताया है तो इतने दिन में हो सकता है कि हमारे यहाँ पर अंदाजा बरसात आ जाए। और जहाँ बात करें हम प्री मानसून की, प्री मानसून भी एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में थोड़ा हमने ज्ञान ये होना चाहिए, भाई प्री मानसून आई है तो उसके इतने बाद दिन के बाद जो मानसून है वो हमारे क्षेत्र में आ जाएगी।
0: बिल्कुल सही सुरेंद्र भाई, इसमें क्या होता है, सीजन के हिसाब से करें तो प्री मानसून अपने अभी मानसून से पहले 3 महीने होते हैं वो आ जाते हैं, जुलाई जून से मानसून का पीरियड माना जाता है।
1: हाँ।
0: तो परंतु अपने क्या होता है, यहाँ बारिश आएगी प्री मानसून, अभी जैसे केरला हिट हुआ और नॉर्मल तारीख है 31 मई, परंतु वो 5 दिन बाद में केरल हिट हुआ है, अभी वो तमिलनाडु होके अभी महाराष्ट्र और आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी ठीक है मानसून की अभी जो उसकी गति है वो सही है अपने तक पहुँचने में, क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट

0: में पड़ते हैं, क्योंकि हरियाणा और फिर उसके बाद में राजस्थान आ जाता है। राजस्थान में लास्ट बारिश शुरू होती है 15 जुलाई के आसपास, और अपने हरियाणा में 20 जून के आसपास प्री मानसून शुरू होती है यदि नॉर्मली गति से चलेगा तो, और जुलाई के या जून के आखिर में 30 जून के बाद से और 5 जुलाई के बीच में आमतौर पर हरियाणा में मानसून प्रवेश करता है।
1: जी
0: अभी क्योंकि मानसून अभी शुरुआत हुई है, लेट हुआ है, और कुछ कंडीशन ऐसी, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मैंने पहले ही बताया IMD एक नोडल एजेंसी है, हम उसी सब उसी के एक छतरी के नीचे काम करते हैं। तो अभी उन्होंने ये बताया कि भी इस बार एल नीनो के कारण कुछ समस्याएं रहेगी, परंतु मेरा विश्वास है कि अभी पर 20 जून के आसपास प्री मानसून बारिश होगी और जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून अच्छी तरह हरियाणा को कवर कर लेगा। और अभी इंडियन ओशियन डाइपोल एक होता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, अभी जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव है,
1: जी
0: हमारे लिए फायदेमंद है। उससे उम्मीद करते हैं कि एल नीनो की कंडीशन के बावजूद हरियाणा में बारिश ठीक ठाक होगी।
1: जी जो ये आपने एक ये एल नीनो शब्द का प्रयोग किया डॉक्टर साहब, क्योंकि देखो सारे किसान भाई इस बात को नहीं समझ पाए, थोड़ा इसके बारे में ये बताओ बे, एल नीनो जो शब्द है वो क्या है, और उसको मान लो हम मैसेज में भी कहीं, जैसे आपके मैसेज आते हैं उसमें भी पढ़ें या सुने, तो उसको क्या समझें?
0: हाँ, क्योंकि एल नीनो और ला नीनो दो शब्द होते हैं भाई जी।
1: जी
0: एल नीनो में क्या होता है कि जब पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर
1: जी
0: का यदि समुद्र का तापमान है वो यदि बढ़ता है, तो उस टाइम हम कहते हैं सामान्य से वो बड़ा है तो वो एल नीनो शब्द होता है, और यदि उसका तापमान कम होता है तो ला नीनो शब्द होता है। तो एल नीनो ये जो प्रभाव डालता है उसके कारण क्या होगा, जब तापमान समुद्र का बढ़ेगा तो वहाँ कम दबाव बन जाएगा, है जी,
1: जी
0: तो नमी वाली हवाएं होती है वो अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ बढ़ने लग जाएगी। यदि हमारे बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से जो नमी बनती है अपने भारतीय सागर से, तो उससे जो नमी है वो उस पैसिफिक ओशियन की तरफ चली जाएगी, तो हमारे यहाँ बारिश कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: जी
0: परंतु इसमें बारिश में फैक्टर बहुत काम करते हैं, कई कारक होते हैं जिनके कारण यह बारिश हमारी मानसून यहाँ तक पहुँचती है। तो उसमें यह होता है कि एलनीनो कंडीशन होती है तब मुश्किल आती है कि नमी सारी उधर चली जाएगी, दूसरे ऑस्ट्रेलिया की तरफ या अमेरिका की तरफ उधर बढ़ जाएगी। परंतु यदि वो लानिनो कंडीशन हो तो हमारी तरफ हमारे वाले नमी ले आते हैं उसके बदल, तो वो नमी हमारी तरफ आएगी, हवाएं नमी वाली हवाएं, तो बारिश हमारी ज़्यादा होती है लानिनो कंडीशन में। तो एक तो ये कारण होता है एलनीनो, पैसिफिक ओशियन में ये बनता है
1: जी
0: समुद्र का तापमान ज़्यादा हो,
1: जी
0: अभी इस बार समुद्र का तापमान बढ़ रहा है वहाँ।
1: जी
0: और दूसरा है इंडियन ओशियन डाइपोल, वो हमारे पॉजिटिव है और वो ठीक है, और उसके कारण उम्मीद करते हैं कि इस बार मानसून ठीक ठाक रहेगा। अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो प्रडिक्ट किया है वो हरियाणा के लिए मानसून सामान्य से कम रहने की संभावना जताई है, परंतु यदि हमारे सारे फैक्टर देखें और अभी जैसे पश्चिमी तटों पर भारत के, जैसे अभी केरला हिट हुआ है तो पश्चिमी की तरफ महाराष्ट्र की तरफ बढ़ने शुरू है और गुजरात की तरफ बढ़ेगा आगे, और गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगा, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार मानसून ठीक ठाक हो जाएगा। हमारी फसलों के लिए बहुत लाभदायक होता है मानसून, कृषि के लिए बहुत बड़ी की मानी जाती है,
1: बिल्कुल
0: कुंजी मानी जाती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: यदि हमारी कृषि तभी अच्छी होगी, धान है अभी धान की रोपाई शुरू हो जाएगी, किसान भाइयों को यदि अच्छी बारिश होगी तो धान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे सिंचाई के साधन होते हुए भी बारिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
1: इसमें डॉक्टर साहब देखो, जो पहले मौसम है जिसको हम ये कहें भाई ज़्यादा लू चलना है, ज़्यादा गर्मी होना है, क्या इसका प्रभाव भी इस मौसम पे कुछ फर्क डालता है?
0: हाँ बिल्कुल, इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी तापमान है अप्रैल के बाद में यदि लगातार तापमान बढ़ता है, यदि तापमान ज़्यादा बढ़े तो कम दबाव का क्षेत्र बनता है, तो हवा अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ बढ़ेगी तो नमी ज़्यादा हमारी तरफ आएगी। यदि अभी भी जैसे अभी बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ तो आएंगे, अभी भी आएंगे, जैसे मान लो हर हफ्ते में आता है, उसका प्रभाव कितना रहता है वो अलग बात है, परंतु यदि वो तापमान हमारा लगातार बढ़े, मान लो अभी इस मैदानी क्षेत्र में 40 से लेके 45-46 डिग्री तक अभी आगे पूरे जून में बढ़े तापमान, तो उसमें मानसून जल्दी आने की संभावना रहती है, और ज़्यादा जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही वो नमी को ज़्यादा सिंचित करेगा हवा, तो वो ज़्यादा बारिश के चांस बढ़ते हैं।
1: एक और डॉक्टर साहब, देखो आज तो एक वैज्ञानिक युग है, आप उसमें मशीनों से भी दबाव का पता लगाओ हो, ऊपर भी काफ़ी अच्छी अच्छी जो मशीनें हैं वो लगाई हुई हैं, लेकिन एक अपने जो पहले के जो किसानों का जो तजुर्बा होया करता, वो होया करता कि भाई जितने पवन उतने पानी, तो उसका क्या महत्व है कि भाई जितना पवन, जितनी ज़्यादा हवाएं चलेंगी, जितनी ज़्यादा आंधियाँ चलेंगी, और जितना जो हवा मान लो पश्चिमी साइड की ज़्यादा चलेगी, तो उसका क्या दबाव का क्या कारण रहता है डॉक्टर साहब?
0: नहीं, बिल्कुल सही सुरेंद्र भाई, ये आईटी के कहते हैं, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी नॉलेज, आईटी के, जो हमारे बुजुर्ग इन चीज़ों को देखा करते थे। तब तो ये मशीनें नहीं थी
1: नहीं थी,
0: और भारत मौसम विज्ञान विभाग भी इतना उसमें
1: हाँ दुरुस्त नहीं था।
0: दुरुस्त नहीं हुआ करता। अभी तो हर जगह ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लग गए, पूरा सिस्टम बन गया, भारत सरकार पूरा पैसा दे रही है भाई, हर चीज़ में एक्यूरेसी दो, किसान तक हर जानकारी पहुंचे। तो ये जितनी आपने कही है, इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। जब हवा में नमी ज़्यादा होगी तो भी बारिश के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे, और हवा जैसे पश्चिमी हवा चलेगी, क्योंकि हवा जब बारिश आती है तो पूर्व एकदम हवा बदलेगी, तो उस टाइम देखा जाता है कि भाई अभी बारिश के आसार बढ़ेंगे, क्योंकि बादलों की स्थिति है, बादलों की दिशा है, बादलों में पानी कितना है, बहुत सारे फैक्टर है। उस टाइम हवा कैसी चलेगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मानसून या हवाएं या मॉइस्चर वाली विंड है, नमी वाली, वो हवाएं हमारे तक पहुँचे और हरियाणा में अच्छी बारिश हो।
1: देखो डॉक्टर साहब, इसमें तो ज़्यादा तो जो बाकी तो देखो मौसम विभाग है, किसानों की सेवा में हर समय है, इसके लिए क्या कोई ऐसा नंबर है आपके पास सुविधा के लिए, जिसके लिए किसान भाई मान लो कॉल कर सके, या कुछ मान लो जिस पे किसी प्रकार की मौसम संबंधी जानकारी है वो ले सके, तो उसके बारे में भी कोई प्रावधान हो तो बताओ डॉक्टर साहब।
0: हाँ, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के जो कुलपति है उन प्रोफेसर बीआर कंबोज, वो भी चाहते हैं कि हर किसान तक ये जानकारी पहुंचे,
1: जी
0: और हमारा रेडियो एक अच्छा माध्यम है, न्यूज़पेपर, रेडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये सारे माध्यम है भाई साहब, और उन तक जानकारी पहुँचने का एक माध्यम है हमारा।
1: जी
0: तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फेसबुक पेज है, ई मौसम HAU फार्मर्स ऑफ हरियाणा, तो उस पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप जो मेरे नंबर है खुद का, 9419-95529, 9419-95529,
1: 94, अच्छा जी,
0: ये मेरा खुद का नंबर है, उस पर भी किसान भाई अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ सकते हैं। और एक वेबसाइट है emosumhau.gov.in, उस पर भी अपने नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और हम जानकारी पहुंचाने का प्रयास, जितने भी केवी के हैं कृषि विज्ञान के अंदर, उन पर भी अपने किसान भाई नंबर दे सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी हर गांव में पहुंचते हैं, उनको भी अपने नंबर दे सकते हैं, वो हमारे तक पहुंचाएंगे। हम हर जानकारी हर किसान तक पहुँचाने का प्रयास रहते हैं।
1: क्योंकि इसमें डॉक्टर साहब देखो एक बहुत अच्छी जो सुविधाएं हैं किसानों को दी जा रही हैं, और विशेषकर ये भी देखो पहले तो क्या आ रहा था भाई पूरे हरियाणा प्रदेश का हम ये मान्या करते भाई हरियाणा में आज ये होगा, इस तरह का मौसम होगा, लेकिन अब तो जिला वाइज इसका जो मौसम की जो जानकारी है मौसम विभाग द्वारा दी जाए, एक बहुत अच्छी जो जिसको हम पहल कहें शुरुआत कहें ये बहुत अच्छी है, तो उसमें जो किसान भाई हो कितना ये मानक भाई ये सटीक जानकारी हो सकती है?
0: बिल्कुल सुरेंद्र भाई, इसमें सटीकता तो किसान ही ज़्यादा बता पाएगा, हम तो अपने मुंह से ज़्यादा कहें तो अच्छा नहीं लगेगा। यदि हम विंटर एंड ये पश्चिमी विक्षोभ की फोरकास्ट कहें, ये तो मान लो मेरे हिसाब से, मैं जो अब तक काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मेरा, 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी है।
1: जी
0: और यदि मानसून की बात करें तो भी 70-80% तक मानसून की एक्यूरेसी बढ़ रही है, पहुंच रही है भी किसान तक। उसको मेरा तो एक ही सुझाव है आप लोगों के माध्यम से किसान भाइयों को, कि जो भी मौसम की जानकारी, हम 3-3 घंटे की फोरकास्ट भी देते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की सौजन्य से, चंडीगढ़ AMC मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, उसके माध्यम से हम सारे मिल के करते हैं, तो वो फोरकास्ट को भी प्रयोग करें। जो मौसम की जानकारी जितना ज़्यादा, जैसे सिंचाई है या खाद डालते हैं, वो इनपुट है, बिना खाद के तो फसल को नहीं होगी, तो ऐसे ही दिमाग में पानी नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही आज मौसम है, एक इनपुट है, उसका प्रयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई उसका प्रयोग करके अधिक पैदावार लें, कम लागत करें, क्योंकि उससे लागत बचाई जा सकती है। जो मैंने पहले भी कहा था
1: बिल्कुल,
0: भी खाद कब डालनी है, यदि मौसम सही हो तो पानी नहीं देना, बारिश की संभावना बताएं तो 2 दिन रोक लो, ट्यूबवेल ना चलाएं,
1: जी
0: तो इस तरीके से वो स्प्रे करनी है, स्प्रे को रोकी जा सकती है, कोई मान लो एकदम ऐसा नहीं होता,
1: क्योंकि मान लो डॉक्टर साहब स्प्रे कर दिया और ऊपर से बरसात होगी
0: हाँ
1: तो फिर वेस्ट जाएगा, तो फिर
0: बिल्कुल
1: फायदा नहीं उस
0: और
1: चीज
0: मंडी
1: का।
0: में ले जाते हैं किसान भाई फसल को,
1: हाँ
0: लेके जाते हैं, क्योंकि तिरपाल वगैरह नहीं ले जाते,
1: हाँ
0: यदि बारिश का पता हो तो किसान भाई खुद तिरपाल
1: उसको
0: अपना
1: रोक लेगा,
0: अपना तिरपाल का प्रबंध भी रखे साथ
1: प्रबंध
0: में।
1: कर रखेगा या उसको रोक लेगा अपने घर पे
0: आप
1: रोक सकता
0: मंडी
1: है।
0: या सरकार या आढ़तियों के भरोसे ना रहे,
1: हाँ
0: किसान भाई खुद अपने आप सक्षम रहे कि मुझे तिरपाल आदि का प्रबंध अपने साथ रखना है, मेरी फसल को बचाना है, क्योंकि उससे क्वालिटी भी नुकसान होता है क्वांटिटी के साथ साथ। यदि हमारी फसल है बिल्कुल सूखी होगी तो ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो किसान भाइयों का ये भी एक है कि मौसम की जानकारी का वो हर कार्य में प्रयोग करें।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत जो अच्छी बातें मौसम संबंधी जो हमारे किसान भाई हैं उनको दी कि भाई देखो एक किसान है यदि उसको मौसम का पहले पता है तो वो अपने बहुत से जो जाप्ते हैं वो कर सके है और अपना बहुत सा होने वाला जो नुकसान है उससे भी बच सके है। और जैसे मौसम की जो जानकारी आपके द्वारा जो समय समय पर दी जा हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप से, चाहे वो फेसबुक से, या फिर कोई अन्य जितने भी आपने तरीके बताए हैं उनके माध्यम से जुड़कर एक किसान भाई मौसम संबंधी जो भी फायदा उठाना चाहे वो उठा सके है, और आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है उनके ऊपर पूरा भरोसा करके इस बात का ध्यान रखे कि वह अपनी जो फसल की, चाहे बिजाई का काम हो, चाहे खाद लगाने का काम हो, इनसे वो अपना फ़ायदा उठा सके। तो डॉक्टर मदन खिचड़ जी आप स्टूडियो में आए, हमारे जो किसान भाई बहुत उनको अच्छी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सुरेंद्र भाई, धन्यवाद।
1: तो भैया ने ये तो सुनी बातचीत, डॉक्टर मदन खिचड़ जी ने बहुत अच्छी बढ़िया जानकारी दी, जो हमारे किसान भाई हैं वो मौसम के जो ऐप हैं उनसे ज़रूर जुड़े। और ईब सुनेंगे एक रागनी मास्टर सतबीर बैंसवाड़िया और उनके साथियों की गाई हुई।

去，爹你呀，给苦难，这不本地杀个嘞，千里再给。

रथ सौरन का ज्ञान के घोड़े जोड़ चला रे पाप पुण्य दो पहिए बना के बैठे रथ में दौड़ चला अहम ममता की दो डंडे।

स्वार्थी बुद्धि अंतकरण स्थान किया रे मोह सोग की दो चुरी बना के पंच कर्म गति ज्ञान किया सात दाति और पांच सामग्री विषय रूप सामान किया सवरण के वस्त्र पहन रजोगण अक्षय का धारण पान किया स्वर्ण के वस्त्र पहन रजोगण अक्षय का ये करता भोगता मैं करने से करता भोगता मैं करने से या बंधन फांस

प्रकृति विष राग द्वेष के धनुष बाण कर हाथ लिए। ज्ञानमति सत्य बुद्धि को तज सोच विषय उत्पात लिए। रे महान निर्दयी करुर चित राजा कर पशुओं से घात लिए। महान निर्दयी ओ नो नहीं सोचा के जीव

भैया ने ये सुनी रागनी मास्टर सतवीर बैंसवाड़िया और उनके साथियों की गाई हुई। देखो बातचीत सुन ली हमने जो मौसम की जानकारी संबंधी जो हमारे किसान भाइयों की है, और रागनी सुन ली। और भैया देखो कुछ सावधानी रखने की भी बात हो हैं, और उनमें एक मुख्य सावधानी की बात ये है कि भाई जो भी हम कृषि रसायन खरीद रहे हैं वो जिस समय भी हम खरीद रहे हैं उसमें एक सावधानी रखने की बात ये है कि एक तो जो हम कृषि रसायन खरीद रहे हैं वो सिर्फ उतनी मात्रा में खरीदें जितने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा घर पे ले जाकर उसको हम ना रखें। और जो भी हम दवाई लेके जाएं खेती के लिए वो बच्चों की पहुँच से पशुओं की पहुँच से बिल्कुल दूर होनी चाहिए, एक अलग से होनी चाहिए, और उसका जो स्टोर है वो हमेशा ठंडी जगह पे होना चाहिए। ये नहीं कि भाई उसको हमने कहीं जाकर धूप में ले जाकर रख दिया तो उसकी जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो गया है और उसकी जो ताकत है वो कम हो गया है। बाकी इसमें जिस जगह से भी लें, जिस दुकानदार से लें, उस पर पक्का बिल ज़रूर ले लें, क्योंकि दवाइयों का ऐसा काम है कि इनके अंदर कई बार बड़ा धोखा हो गया है। और फिर जो हमारा किसान भाई है ये कहता रह जाए भाई दवाई नकली मिल गई, तो यदि उसका सैंपल हमारे पास है उसको थोड़ा हम बचा के रख लें दो टोपे, और कोई ज़रूरत पड़े तो मान लो ज़रूरत कहीं लैब में ले जानी पड़ जाए या कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उसका हम नमूना ज़रूर रख लें, और उसको ऐसी जगह पर रखें भाई जहाँ बच्चे और पशुओं से दूर हो, एक अलग से जगह पर रखें, और उसका जो पक्का बिल है वो लेवेंगे तो जब आगे हमारा हम कहीं शिकायत करने के उसमें रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। और भाइयों देखो एक ध्यान रखने की सबसे ज़रूरी बात हमने दिन में भी करी, भाई ये जो मिट्टी और पानी की जांच का सही समय है, इस समय पर यदि हम मिट्टी और पानी की जांच करवा ले हैं तो फिर हमारा जो खर्चा है कुछ न कुछ ज़रूर फर्क उसमें रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे खेत हैं उनमें कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो ज़्यादा पड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम हैं, लेकिन हमने जो पता नहीं है मान लो ज़्यादा पड़े हैं और उसी चीज़ को हम और डाल रहे हैं तो वो पैसा भी हमारा ख़राब होगा और जो हमारी फसल होगी उसकी अधिकता के कारण भी ख़राब होगी। इसलिए जो संतुलित मात्रा में हमारी ज़मीन है उसके अंदर जो पोषक तत्व यदि हैं तो उसी हिसाब से जो हमारी फसल है वो आगे बढ़वार लेगी और उसी हिसाब से उसका फायदा भी होगा। बाकी इसमें ये बिल्कुल निःशुल्क हो है और उसकी जाँच है मिट्टी पानी की हम जरूर करवाएं, इसमें कोई भी कोताही ना बरतें। ये कुछ ध्यान रखने योग्य बात थी भाई, और ध्यान रखना है हमने जो कृषि जगत कार्यक्रम है उसका भी, क्योंकि कृषि जगत जो कार्यक्रम है उसका समय तो हो गया अभी समाप्त। ईब कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार, और भाई ग्रामीण संसार में आपकी पसंद, और आपकी पसंद में भैया ने एक हरियाणवी फिल्म चंद्रावल का गाना सुनवाएंगे जिसको गाया है दिलराज कौर और उनकी सखियों ने। पसंद भेजी हैं आप सब ने, गांव भाणा ब्राह्मण से हैं मेघराज शर्मा, जोगेंद्र शर्मा, सौरभ, गौरव, अजय, विजय, जितेंद्र शर्मा और उनके परिवार के सदस्य। और ये चिट्ठी भेजने वाले श्रोता हैं गांव द्वारका से शमशेर सिंह, सिलोचना देवी, सतबीर सिंह और उनके परिवार के सदस्य। गांव बागोत से ये हमारे श्रोता हैं प्रकाश अमावत, बनवारी, फूल सिंह और उनके परिवार के सदस्य। ये चिट्ठी भेजी है गांव पांडू पिंडारा जिला जींद से बादल सिंह गिल, कमलेश रानी गिल, अंकित गिल और उनके परिवार के सदस्य। गांव नगूरा जींद से ये हमारे श्रोता हैं पाल, जगदीश, बलवान, रामकुमार, अजय सिंह, सज्जन, चंदर, वीरभान और उनके परिवार के सदस्य। तो भाई सुने अपनी पसंद पर ये हरियाणवी फिल्म का गाना, चंद्रावल फिल्म का गाना है जिसके गायक हैं दिलराज कौर और उनकी सखियां।

भैया ने ये तो सुना गाना फिल्म चंद्रावल से, जिसके गायक थे दिलराज कौर और उनकी सखियां, और इसी हरियाणवी फिल्म के गाने को पसंद करने के लिए कुछ पत्र और आए हैं। उनमें करणपुर राजस्थान से हैं शिव कुमार सेठी, सुनीता सेठी, कमल सेठी, ज्योति बानी, राजू टुटेजा मांझीवाला और उनके परिवार के सदस्य। और ये चिट्ठी भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गिड़काली मुजफ्फरनगर यूपी से कृष्ण पाल डबास, अनुज, राजेंद्र, अजय, नीटू, विनोद डबास और उनके परिवार के सदस्य। इडौन शहर जिला करौली राजस्थान से खुशीराम, मोनू, विष्णु, दीपक, राहुल, रिंकू और परिवार के सदस्य। महेंद्रगढ़ से ये हमारे श्रोता हैं ममता गांधी, विकास गांधी, वंश, दिया, नोनू शगुन और उनके परिवार के सदस्य। गांधी जनपद बागपत उत्तर प्रदेश से ये हमारे श्रोता हैं कांसीराम दलाल, बलदेव सिंह आर्य, रामपाल, दयानंद, धर्मवीर, नितिन, अर्पित, हरिओम, ओमपाल, सन्नी, निवेश, अनुज और उनके परिवार के सदस्य। ये चिट्ठी भेजी है छापरौली उत्तर प्रदेश से जसवंत सिंह खोखर, राम कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार, प्रवीण और उनके परिवार के सदस्य। और ये चिट्ठी भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव दोरड़ से श्रीराम चहल, बीर सिंह चहल, मामन मास्टर ओम।

परिवार के सदस्य है। और खरकड़ी हिसार से ये चिट्ठी भेजी है बागाराम, पवन कुमार, पंकज, रमेश, शमशेर, दिनेश, सुभाष और अमरजीत। और ये चिट्ठी भेजने वाले हमारे श्रोता हैं झिंझर से मास्य सतवीर शर्मा, कौशल्या, बाला और उनके परिवार के सदस्य हैं। ये हमारे श्रोता हैं जाटू लुहारी से रामपुर हरिराम, मदन, साधुराम, आवा सिंह और उनके परिवार के सदस्य हैं। गांव श्यामड़ी से हैं ये हमारे श्रोता डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, शकुंतला शर्मा, इंद्र प्रकाश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, संदीप शर्मा और उनके परिवार के सदस्य हैं। तो भाइयों देखो आज जो ग्रामीण संसार कार्यक्रम है उसको यहीं समेटने की इजाज़त देते हैं। सारे बाण भैया ने राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक. इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
1: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
2: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ. और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति. उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता. और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जी. उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है. मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है. इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है.

0: जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सकें और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थीं, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी
0: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स
1: जी
0: मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता। लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं। तो सालाना 1 लाख रुपया, देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे।
1: जी
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो
1: जी
0: लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना, जो पीएम मुद्रा योजना है, उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं। और उन कारोबारों से आगे चलना, मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लगती से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं, विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और पी महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग। वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी। क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स। तो वो
1: एब्सोल्युटली
0: काम भी हो रहे हैं
1: जी
0: जी।
1: जी
0: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है, और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं? तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं, वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। तो
1: एब्सोल्युटली
0: ये
1: एब्सोल्युटली जी
0: सशक्तिकरण मात्र नहीं है
1: जी
0: जी, ये आजीविका के मामले हैं
1: यस
0: जी।
1: अदिति जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड यू नो द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन। इनफैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशरीज, एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, 3 करोड़ प्लस वुमेन led MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
2: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the four pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women are given conditions and, where women are handheld to achieve their true potential. So what we are seeing today is that driven by several life cycle based approaches through the policy framework of the government, we have schemes now that have targeted interventions through sectors like health, education, housing, there's digital access, sanitation, then you have financial inclusion. What I'm basically trying to say is women are today in a position through the policy framework to lead self-help groups, launch businesses. They're breaking barriers in science, defense, and sports. We just saw JEE Advanced results come in and how women were leading over, the girls were leading over boys in several of the top positions. So in STEM disciplines, Indian women are leading, not just in India, but across the world also. Right now, as we speak, fresh data has suggested that women and children, they comprise 67.7% of India's population, the data that has come in just before the beginning of the new census. So empowering them is not just a requirement anymore. It is a strategic imperative because look at the percentage of women and children in the country, literally 70% right now. So that is the basis of the landscape that is being created. What you just mentioned, that you have women leaders across segments these days. And you rightly said that, you have women in startup leadership roles, you have women across mudra loans, you have around 70% mudra loans that have gone to only women. So the gaps that existed in the policy framework to enable women to achieve their financial potential have now been filled through several schemes. And what we also need to remember, Sonu, is that for generations, Indian women have faced systemic barriers. They've been limited access to education and healthcare, to employment, as well as decision making, especially if you look at the rural heartland of the country. But now what you see is you see a massive movement of around 90 lakh self-help groups. This is basically a rural economic phenomenon. And 10 crore women are already associated with these self-help groups. This is the backbone of the Lakhpati Didi program that the government is mentioning and is powering like never before. And they have also enhanced the targets under the scheme. I think the plan is now to have 6 crore, if I'm correct, women attain the Lakhpati Didi status. The idea is basically to help women make 1 lakh rupees annually as income through various programs that go on under the self-help group movement of the Government of India. So there is focused intention to help women reach where they belong. And the larger point that we have to make is that women are now no longer seen as passive beneficiaries of government schemes. They are seen as empowered agents of change, central to the growth story of the country. And if you look at the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, you will realize that the government has put in its policy intent also to ensure political empowerment of women, which is the ultimate empowerment.
1: You were saying, that women are not just passive beneficiaries. Bank sakhis, krishi sakhis, pashu sakhis. These concepts, really embody what you're saying, that empowerment of women by women.
2: Yeah, absolutely. You see, for a very long time, what had happened is, like I think Sushma ji was mentioning very rightly, she was saying that it's never been that there has been lack of potential on the side of Indian women. Women in our country have a profound legacy of strength. Throughout centuries, if you look, they've led empires, they've driven social reforms. They've even fought on the front against the colonial British rule. I mean, we have Rani Lakshmibai as an example, Rani Chennamma, Ahilya Bai Holkar. Among freedom fighters, we have Lakshmi Sehgal, Sarojini Naidu. So there are n number of examples of women enterprise in our country through different sectors and through different segments. What had happened is suddenly after independence, there was lack of policy intent to see women as drivers of change. So, you were not looking at women as a segment that can drive the economy of the country. Now that entire policy focus has shifted. And like you said, that women have been brought into the financial mainstream of the country. And the first big step that helped lay down the landscape for that was the Jan Dhan accounts. Now, this sounds very simple, it sounds very mundane, but it's a very, very big, very consequential reform. Under the Jan Dhan accounts, the bank accounts that were opened, zero balance accounts, majority of the accounts are owned by women. I think if not majority, at least 40% of these accounts are with women. And around 58 to 60 crore accounts have been opened in the country. So once you have the banking system in place, you have linked women beneficiaries through Aadhaar to these bank accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman is being given Mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, you know, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Smriddhi Yojana, which are basically meant to help, you know, improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the Jam Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, you know, pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers. And then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system. And you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, Pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them.
1: Sushma ji, Aditi ji ne life cycle targeted schemes ki baat kari, aur jo daughters hain unke education, unke birth se hi unke liye aage ki unki jo future hai usko secure karna. Agar hum PM Sukanya Samriddhi Yojana ki baat kare, jiska zikr Aditi kar rahi thi, to usme jis tarah ka vikas hua hai, agar hum dekhe to financial year 2014-15 mein 4.2 lakh accounts the, aur financial year 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीस हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
0: बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी, ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गॉन डाउन टू बिलो 900, which has now, of course, become 929. And Beti Bachao, Beti Padhao was a product of that, or was because of that. Aur usse ye labh hua, ye linganupat to badha hi badha. Aap dekhenge ki mahila namankan shiksha ke kshetra mein, chahe vah schooli shiksha ho, चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज अ ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they're outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए, कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए, और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है, उसके लिए भी.
1: बिल्कुल,
0: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं, जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़, विमेन वर्क सिस्ट और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं वुड बी मदर्स आर देयर
1: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
0: Yes.
1: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek
0: yes.
1: aur jo aapne baat kari, matritva
0: Raksha. Support
1: di ja

0: जी, सो मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स नीचे आए हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। जी 98, बिल्कुल 98%। तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
0: जी,
1: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
0: जी जी।
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%। सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से। सो ODF फ्री इंडिया, देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टैलिटी एज यू सेड which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, yes, which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: And also when yes, women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, yeah, due to the yeah, Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Mm-hmm. You can see the women have dreams about their children now, mm-hmm, and especially the daughters. Mm-hmm. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. Aur Modi ji jo baar baar kehte hain, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है। दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी से आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है।
0: एब्सोल्युटली आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे, उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है, ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं। जैसे हमें याद आता है RG कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ, ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया। निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए। मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए, सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है, समाज

0: सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में
1: जी
0: समाज का रोल आ
1: जी
0: जाता है।
1: बिल्कुल ही, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हैं। लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आएं और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है, तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है, बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है।
1: जी
0: अब
1: जी
0: अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
1: बिल्कुल
0: होगी, और ओनस टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है, या गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में, या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है which is easier for women especially, if you don't have to go anywhere and you can still access most of the facilities, nothing better than that. That is almost best, because अपने आप में movement या आवागमन जिसको कहते हैं, वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है, और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है. इसलिए digital empowerment, digital training और digital capacity building, ये target रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे. There can't be a better recipe because if you get some financial support, which women need usually, and maybe after some time they don't even need, they may have their own groups, they may have their own financiers also, like they are coming up now. But with that, you also need later skills because skills keep changing. And the market needs different kinds of skills. At times, they may be digital skills in coming time. And you see, women are really very good at that because this is heart and hand, both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also, I would say, or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है, women led development कब होगा? वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो है ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है. 33% at the local roots or the grassroots has come to 50% or more than 50%. और यही 33% जब parliaments और legislatures में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं, ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी. और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार होंगे.
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है, जो पुरुषों से कुछ ऊपर है. और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका. एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है. सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी.
2: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज. आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न. एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन. तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर, तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी. आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे. और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा. और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी.
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
0: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं. तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है. अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है. वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए. वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है. इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते. तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, सुनिए चोर निकल के भागा। इस फिल्म से विशाल मिश्रा और रश्मित कौर की आवाज़ें हैं, गीतकार और संगीतकार हैं विशाल मिश्रा।

विशाल मिश्रा और रश्मित कौर की आवाज़ों में आपने सुना चोर निकल के भागा। इस फिल्म का गीत गीतकार और संगीतकार थे विशाल मिश्रा। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं धुरंधर फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज़ है, गीत के बोल रचे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है शाश्वत सचदेव ने।

ये था धुरंधर फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीत था शाश्वत सचदेव का। आइए अब सुनते हैं राहत फ़तेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में झूम बरोबर झूम फिल्म का गीत। गुलजार के बोल हैं, संगीत है शंकर एहसान लोय का।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं तुम मिले फिल्म से। मोहित चौहान की आवाज़, सईद कादरी के बोल, संगीत है प्रीतम का।

जवान फिल्म से आपने सुना अरिजीत सिंह और शिल्पा राव का गाया ये गीत। इस गीत को रचा था कुमार ने, संगीत था अनिरुद्ध रविचंद्र का। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, गजनी फिल्म से। बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं, प्रसून जोशी के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में आपने ये सुना शेरशाह फिल्म का गीत। इनके साथ इस गीत को अजीज कौर ने भी गाया था। गीतकार और संगीतकार थे तनिष्क बागची। आइए अब सुनते हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म से राहत फ़तेह अली खान और तुलसी कुमार का गाया ये गीत, जिसे रचा है इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

आइए सुनते हैं आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रैक फिल्म से। विशाल मिश्रा और श्रेयर घोषाल की आवाज़ें हैं, गुरप्रीत सैनी और अली जफर ने इस गीत के बोल रचे हैं, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह।

ये थी सुगम संगीत कार्यक्रम की अंतिम गजल। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपने सुनी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई गजलें। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। इसके बाद ठीक 9 समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts Under-18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will also benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Shubhendu Adhikari at Navarno in Kolkata, Mr. Vaishnav said 14,205 crore rupees has been allocated to West Bengal in the railway budget for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
2: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
6: In Madhya Pradesh, both the BJP candidates, Party National General Secretary Tarun Chugh and Rajnish Agarwal, filed their nominations for the Rajya Sabha elections today. The nomination papers were submitted before the returning officer at the Bhopal Assembly, senior party leaders, Chief Minister Dr. Mohan Yadav, BJP State President Hemant Khandelwal and Minister Kailash Vijayvargiya were among those present on the occasion. The Congress has fielded former Mandsaur MP Meenakshi Natarajan as its candidate. The last date for filing of nominations for 3 Rajya Sabha seats from Madhya Pradesh is the 8th of June. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the road mishap in Ferozpur, Punjab today, which claimed 9 lives and injured several others. In a social media post, the Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was till today. Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia today said India's youth are the biggest strength of the country and will play a leading role in realizing the vision of Vikasit Bharat by 2047. Addressing the youth for Vikasit Bharat My Bharat Youth Convention in New Delhi, the minister said My Bharat was created by Prime Minister Narendra Modi as a platform for youth to share their aspirations, ideas and volunteer spirit for nation building. He added that 65% of the country's population is below the age of 35, making India one of the youngest nations in the world.
7: About 65% of the country's population is below the age of 35, which means India is a young nation. To channel the strength and potential of this youth towards the vision of Viksit Bharat, Prime Minister Narendra Modi has launched and implemented various initiatives and schemes.
8: Narendra Modi ji ne kara hai.
6: Union Minister of State for Communications and Rural Development, Dr. Pema Sani Chandrasekhar, today inaugurated the Samriddhi Kendram at Nara Koduru village in Andhra Pradesh's Guntur district, marking a major step towards rural digital transformation. The centre has been established under the central government's Bharat Net Udyami initiative. With this, Narakaduru has become the third village in India and the first in the Telugu states to host the integrated rural development model. The Samriddhi Kendram brings together 11 essential service sectors under one roof, like health screening, telemedicine, soil testing, skill development programs, high-speed internet and free Wi-Fi, among others. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship.
9: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border. Our two countries have always stood by each other in times of need. In the wake of the ongoing crisis in West Asia, the Middle East, we have ensured uninterrupted fuel supplies to Nepal. The importance accorded to this relationship by both sides has only recently been demonstrated. We believe that today there is opportunity to decisively shift the trajectory of India-Nepal relations and to realize the full potential of our ties.
6: The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Karnal said India is Nepal's most important partner and Nepal has accorded highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries, but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply

0: such as ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। एक फिल्म से कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं डुप्लीकेट फिल्म के गीत। सन 1998 में पर्दे पर आई इस फिल्म के गीत रचे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में।

0: भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नामांकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थीं। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही है, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियां और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और

0: मैं डेली वगैरह में जाने लगा, और जैसे मैं हिंदी में लिखना नवाई टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहाँ मुझको एंट्री मिल गई, यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे वह। फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवार संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी, तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा, तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीज़ों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
0: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुल्टू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ल्ड पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत, यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो, मैंने कहा लिखते कर, उसने कहा यार तुम लिख हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिख, तो मैं देखूँ तुम्हारी कहानी, तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है कौन छापेगा क्या करेगा, तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी, उसने जी उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा, जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले, मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया, सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गया और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं, तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ, यार फिर ये क्या तमाशा है, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला, तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं, जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो, तो एक तरह से मेरे लिए उत्साह प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है?
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता, क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती हैं। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीज़ों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं ये आपको देख, तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को किसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप फिर नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है, वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप, और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वही यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वो महत्व ये है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है? हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे सर। सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
3: जी,
4: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है
3: जी।
4: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
3: जी,
4: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
3: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
4: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही
3: जी।
4: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
3: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
4: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, या सुभद्रा कुमारी चौहान हों
3: जी,
4: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
3: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
4: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से, कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे छन्नू मिश्रा जी हो, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने, तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन.
1: दिस इज आकाशवाणी. इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुड़े.
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई. इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा. इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया. उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ.
1: Born into a music loving family in Pune, Rishikesh was initiated into vocal music at the tender age of 5 by his father, Shri Purushottam Gangurde. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy Scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: Rishikesh Gangurde, Akashwani ke A Shreni ke Gayak Kalakar hai. उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है. गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है. वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है.
1: ऋषिकेश गांगुड़े इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी, ग्रैंडर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग. बियॉन्ड हिज वोकल प्रोवेस, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit, Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुड़े जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर. अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से. विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है. बोल है प्यारी पग होले होले. इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुत बंदिशे प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी.
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर. Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to 3 Taal. This will be followed by Druta compositions in 3 Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवारा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना.
1: That was राग बागेश्री.
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे. उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की. इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmolin, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
4: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart, Shishir Khanal, in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among US personnel. In tennis, Russian eight seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारे आज के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे कल सुबह 5:55 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH।